02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज.
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियाँ बांटो.
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ RJ शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो आज हम अपने एपिसोड में अष्टावक्र गीता के बारे में जानेंगे. कई वर्षों पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु हुए. वह धरती के महानतम ऋषियों में से एक थे जिन्होंने उस समय एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था. अष्टावक्र का मतलब है वह इंसान जिसके शरीर में 8 अलग अलग तरह की विकृतियां हो. शारीरिक रूप से अष्टावक्र विकलांग पैदा हुए. उनके दोनों पैर हाथ घुटने छाती और गर्दन टेढ़े थे. बाद में जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए तो वह एक शास्त्रार्थ में गए जिसका आयोजन वहां के राजा जनक ने किया था. जनक महान प्रतिभाशाली और असाधारण व्यक्ति थे. जैसे ही अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे उनका रूप देखकर

सभा के लोग हंसने लगे, जिस पर अष्टावक्र ने समझाया कि असली विद्वान चमड़ी या रूप से नहीं ज्ञान से पहचाना जाता है। राजा जनक ने बालक अष्टावक्र से पूछा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों के विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत ही सेवन कीजिए। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि आप ये शरीर नहीं है, इस शरीर में विद्यमान चेतना है। आत्मा न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश तत्व से बनी है। आत्मा तो एक चैतन्य है, चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें, अर्थात स्वयं को आत्मा समझे, तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती। आत्मा इस शरीर में साक्षी दृष्टा के रूप में है। सुख, दुख, जय, पराजय, अहंकार, अपमान, अभिमान, ये सारे विकार मन से जुड़े हैं। आत्मा तो सदैव मुक्त है। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंधन में मानने वाला बंधा हुआ है। आत्मा मन में उठने वाले अनेक भाव भावनाओं की साक्षी है, चैतन्य है, ऊर्जा है। स्वयं को आत्मा ना समझकर देहभान में फंसना, शरीर को ही मैं समझना, यही सभी दुखों का कारण है। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर आत्मा का घर है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकने लगते हैं और स्वयं को साक्षी समझने लगते हैं, तब हम अनेक बंधनों से और दुखों से छूटने लगते हैं। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र ने हमें कई उपदेश दिए हैं। उनके मुख्य उपदेशों में स्वयं को शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य जानना, मोह और अहंकार का त्याग करना तथा इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त करना शामिल है। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं बल्कि उससे पूरी तरह अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह उसी पल सुखी शांत और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं मेरा ये कहना ही बंधन है। मैं कुछ हूं या यह मेरा है ऐसा सोचना ही बंधन है। जब मन में कोई कामना या लालच नहीं रहता तब न कोई बंधन बचता है और न ही मोक्ष की चाह। अष्टावक्र कहते हैं, बंधनों से मुक्त होने के लिए घरबार छोड़ने की जरूरत नहीं है, न ही जंगलों में जाकर रहने की जरूरत है। अष्टावक्र कहते हैं, आप जहां हो वहीं रहो, लेकिन अपने मन से ये मेरापन पूर्णतः निकाल दो। मेरा कहना यही एकमात्र बंधन है। हर कर्म करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए मेरेपन का त्याग यही मोक्ष का असली मार्ग है, यही मुक्ति है। सभी चीजों का उपयोग करते हुए भी किसी भी वस्तु में किसी भी पदार्थ में मोह ना रहे, मेरापन ना रहे, यही मुक्ति है। मोह और मेरापन दुख देता है और साक्षी अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, दुखों को पकड़े रहना यही दुखी होने का कारण है। जिसे पकड़ोगे वही दुख देगा। अपने नाम मान शान इच्छा अपेक्षा आशाएं, इनको पकड़े रहना, भूतकाल की बातों को पकड़े रहना, भूतकाल की स्मृतियों को पकड़े रहना, यही दुखों का असली कारण है। जितना हम अपने नाम से भी जुड़े रहेंगे, नाम को भी पकड़े रहेंगे, उतना हम दुखी होते रहेंगे। जितना भूतकाल की स्मृतियों को पकड़े रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। हमें दुखों ने नहीं बल्कि दुखों को हमने पकड़ा है, और जिस क्षण हम दुखों को छोड़ना शुरू करेंगे। किसी भी बात की पकड़ को जब ढीला कर देंगे, मन से हर एक बात को छोड़ना सीखेंगे, तब हम वास्तव में दुखों से मुक्त होंगे। हम अपने नाम से, अपने इमेज से, अपने मान से, अपने अभिमान से कितना अटैचमेंट में है। जब हम स्वयं को मुक्त करते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त होते हैं। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं,

अज्ञान ही मनुष्य आत्मा के दुखों का कारण है। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान जागता है तब वह सभी बातों को छोड़कर बंधन मुक्त अवस्था में रहने लगता है। हमें दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि हमें अपने अंदर के ज्ञान को जगाना है। जैसे ही ज्ञान जागेगा, अज्ञान अंधेरा दूर हो जाएगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र कहते हैं दूसरों को माफ न करना यह हमारे दुखों का सबसे मुख्य कारण है। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों के प्रति नफरत रखना या उनके किए हुए अपमान को याद करना या किसी भी दुखदायी घटना को अपने मन में पकड़े रहना ऐसा ही है जैसे कोई जलते हुए अंगारे को अपने हाथों में पकड़ा हो। जब हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं तो ये इसी तरह है कि जलते हुए अंगारे को पहले अपने हाथों में उठाना और फिर दूसरों के ऊपर फेंकना। लेकिन जैसे ही हम अंगारे को अपने हाथों में उठाते हैं सबसे पहले हमें ही कष्ट होता है। नफरत द्वेष रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं ही जलता है। दूसरों को माफ न कर पाना ये वास्तव में स्वयं को सजा देने के बराबर है, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे तब तक हम नफरत की, द्वेष की, घृणा की आग में जलते रहेंगे। हम अपनी शांति को गवाते रहेंगे। हम एक बोझ को अपने सर पर उठाकर पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ी स्वयं को दी जाने वाली सजा है। अष्टावक्र कहते हैं जब हम माफ करना सीख जाते हैं तब हम स्वयं को दुखों से मुक्त कर पाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हमें माफ करना है लेकिन अनुभवों से सीखना भी है। हमें उस व्यक्ति के प्रति सावधानी भी बरतनी है। हमें असावधान होकर नहीं चलना है। अष्टावक्र कहते हैं कि परिस्थिति को स्वीकार ना करना यह भी दुखों का कारण है। जब हम परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं तब हम उसके बंधनों से, उसके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। हर मनुष्य आत्मा को भी जो जैसे हैं, उन्हें हमें वैसे ही स्वीकार करना होगा।

अपेक्षा रखना यह भी दुखों का एक कारण है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, हमें स्वयं को बदलने का प्रयत्न करना है। अष्टावक्र कहते हैं, मन में उठने वाला क्रोध, भय, अपमान, अहंकार, अभिमान, यह सब मन की भावनाएं हैं, यह आत्मा नहीं है। और तुम स्वयं चैतन्य आत्मा हो, मन की भावनाओं से अलग। जब आत्मा मन की भावनाओं से अलग अपने आप को साक्षी अवस्था में स्थित करती है, इन भावनाओं से अपने आप को अलग करती है, तब वास्तव में हम जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। हम मन के गुलाम नहीं हैं, मन के मालिक हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा मालिक हैं, तब हम मन के गुलाम बन जाते हैं और भटकने लगते हैं, दुखों का अनुभव करने लगते हैं। आत्मा तो सदैव बंधन मुक्त है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ RJ शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र कहते हैं कि ये संसार एक स्वप्न मात्र है। कोई भी परिस्थिति सदाकाल के लिए नहीं होती। जो भूतकाल है वो एक स्मृति मात्र है। यहाँ पर सब कुछ अस्थिर है। अगर कोई स्थिर है तो वह है आत्मा। परिस्थितियों से, जीवन से शिकायत करना यह भी एक दुखों का कारण है। जितना हम शिकायत करते रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर का चोला बदलने का नाम है, परिवर्तन का नाम है। आत्मा ना तो मरती है ना उसे जलाया जा सकता है। आत्मा तो सदैव अमर, अजर, अविनाशी है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य आत्मा का दुखों का मुख्य कारण भूतकाल की स्मृतियों में रहना या भविष्य की चिंता करना है। भूतकाल और भविष्य दोनों ही मनुष्य आत्मा के हाथ में नहीं है। भूतकाल एक स्मृतियों की तरह है जो बीत गया, और भविष्य की चिंताएं वो कल्पना मात्र है जो वास्तविकता नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर मनुष्य आत्मा वर्तमान में जीना सीख जाए तो वो सभी दुखों से मुक्त हो सकती है, क्योंकि वर्तमान क्षण में ही जीवन विद्यमान है। अष्टावक्र कहते हैं कि भूतकाल की स्मृतियों से या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग ज्ञान है। जहाँ पर ज्ञान जन्म लेता है वहाँ पर अज्ञान का अंधेरा समाप्त होता है, और इसी का फल स्वरूप मनुष्य आत्मा वर्तमान में जीने लगती है।

और जीवन भी वर्तमान में ही मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य आत्मा सदैव वर्तमान में जीती है। वो ना तो भूतकाल की स्मृतियों को याद करती है और न ही भविष्य की चिंताओं में रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जागरूकता ही सारे बंधनों से मुक्ति का मार्ग है, सदा जागरूकता। अष्टावक्र कहते हैं कि मन से लड़ना नहीं है, मन के भावनाओं को साक्षी होकर स्वयं को आत्मा समझकर निहारना है, मन को केवल देखना है, मन से लड़ना नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं आरोग्य और अध्यात्म दोनों ही जरूरी है, मन शरीर और आत्मा की देखभाल जरूरी है। सेवा एक साधन है, जब हम किसी की देखभाल करते हैं तब हम खुद को बदलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं जीवन के अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने वाला बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, बीमारी में भी शांत रहता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अष्टावक्र कहते हैं नदी का स्वभाव बहते रहना है। अगर नदी बहना छोड़कर एक ही जगह पर स्थिर रह जाए तो पानी गंदा हो जाएगा। नदी कुछ भी बातों को अपने अंदर पकड़कर वहीं नहीं रुकती, उसका स्वभाव सतत बहना होता है। इसी प्रकार हमें भी दुखों की बातों को अपने अंदर पकड़कर बैठना नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ भी स्थिर स्थायी नहीं है। इस संसार में केवल आत्मा ही स्थिर चैतन्य स्थायी है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंट्री

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए, मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरीवन एल्स आल्सो बिकॉज इट वाज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है सो वाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside, and doing is what I'm doing outside. तो एक है being happy, and एक है doing something for getting happiness. तो एक है मैं हूँ खुश, और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे, यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: तो खुश होंगी, यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी,
0: आई विल बी अर्निंग ना, व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो।
1: सो व्हाइल दो स्कूल इयर्स मैं ये कहते रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
0: I'm unhappy.
1: अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी। तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए, फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना, व्हेन आई गेट इन टू अ रिलेशनशिप, एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी, फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट, फिर वो रिश्ता हुआ, देन आई से हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना देन आई विल बी हैप्पी। तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा।
0: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे तो और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं, देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग,
1: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
0: वो अच्छे थे।
1: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया। अगर मैं यहां खड़े होकर कह रही हूं कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डिडंट फील दैट, क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में। इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक बट इट इज लाइक दैट। एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स, आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है। तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट, कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड इन द प्रोसेस, मेरा एक एक पल बीतता गया हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अभी

0: पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा। कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड, लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है। एक सेकेंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा, हाउ विल आई फील, कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी। जैसे ही
1: आई विल बी वेरी, यू नो, आई विल बी वेरी फियरफुल।
0: एक्सैक्टली, दैट्स द पॉइंट, दिस इज द क्रक्स। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती,
1: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी,
0: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर। डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं? तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीजों पर, लोगों पर, तो जितने भी चीजों पर वो डिपेंडेंट है, मैं हर चीज के लिए डर में रहूंगी। लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूंगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या। फियर इनसिक्योरिटी, जहां डिपेंडेंसी है वहां इनसिक्योरिटी है। अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है, और कच्चे कर जाओ, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा?
1: ऑफ कोर्स ये कि मेरा बॉस खुश रहे।
0: सी, इट्स ऑलवेज फियर। तो जहां फियर है वहां स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे? इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट। द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं है, क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है, इन चीजों पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी मीन्स फियर। डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी मीन्स फियर। जैसे जैसे आप एक एक चीज से अपने डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटाकर देखो। सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूं मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है, नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू, हाउ विल आई बी?
1: यू विल बी अ स्ट्रांग पर्सन, यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है।
0: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी?
1: You will be stable.
0: I will be very natural. I will not be.
1: You will not be artificial. Yes,
0: See, because meri khushi aap pe dependent nahi hai. I can just be natural. I can be the way I am. Mujhe aapko khush karna nahi hai.
1: You know, we actually dar nahi. Hate to be dependent.
0: We hate to be dependent, but actually, hum sara din dependent hi hai. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है। इतनी चीजों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी, तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है, क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी। अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माई फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहे
1: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको। शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल? क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊं कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूं किसी के लिए भी, वो मैं नहीं करूंगी?
0: एग्जैक्टली। अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस, एक है जो मैं बाहर करती हूं और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूं, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूं। तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूं, आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूं बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूं? अगर मैं डर में हूं तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट है? अगर मैं इनसिक्योर हूं कि मेरी हर छोटी बात पर, यू नो, आपको ये लगे, आप तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छी तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है? What is the energy of the interaction? ये बहुत important है। इसी पर आज हमारे fundamental जो relationships इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने strong नहीं है जितने होने चाहिए, हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज्यादा आज कर रहे हैं। You know, even if we look at parents and child, I feel कि when I was a child तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे। आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसिक्योर, क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है. मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते. जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूँ ताकि मैं आपको खुश कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे. अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लू, आपको जो चाहिए वो आपको दे दू, आपको किसी तरह मैं खुश कर दू ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने के बजाय
1: नुकसान
0: कर रही हूँ. बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट तो वो क्या हो रहा है.
1: समवेयर वी नीड टू चेक आवर ओन इमोशंस एंड व्हाई वी आर डूइंग.
0: एब्सोल्युटली. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माय ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रांग पहले. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव. एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगी जब आप आओगे. ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी. कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की. तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
0: हर्ट ही है ना, ऑफकोर्स हर्ट है.
1: मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कम्प्लीटली
0: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विड्रॉ हो जाती हूँ. बोथ केसेस इट इज एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है. अगर मैं खुश रहूंगी, मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन आप पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है. मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना.
1: अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ. ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ हो. सपोज मेरा ही मूड ऑफ है, ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो है वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली इवन इफ.
0: एब्सोल्युटली. लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है, इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट. एंड दैट्स वाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे काम पर जाती ही है. और फिर एक बार वो थॉट का साइकिल ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई, तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो गई, इट इज ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस. तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा. फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम, I will again carry forward that energy. फिर उसी तरह व्यवहार, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है.
1: फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ जब मैं घर आई, या जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. डिपेंडेंट, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई

0: एसएल वॉज डिस्टर्ब विद समबडी एल्स समथिंग
1: एक बार स्टेबिलिटी क्या है वो एक्सपीरियंस किया तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया वो स्टेबिलिटी मीन्स कि हम डिपेंडेंट नहीं है. जब वो आपने सीख लिया तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थी तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी डिपेंडेंट है.
0: इट विल बी विद ऑल और इट विल बी विद नॉन.
1: एब्सोल्युटली, दैट इज द क्रक्स. इधर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, एंड इफ यू आर डिस्टर्ब यू आर गोइंग टू बी मोर और लेस डिस्टर्ब. यस, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है. और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी? हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो यू मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं. हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी. इसको जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी. एंड ये वो चीज है जो सबसे पहले सामने पहुंचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुंचेगी. एंड वंडरफुल बात यह होती कि इफ आई रियली क्रिएट लव for you, even if I say something जो थोड़ा सा harsh है, suppose मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, but I'm very clear कि intention क्या है, what do I feel for the opposite person, तो आपको वो बात hurt नहीं करेगी, क्योंकि वो hurt की energy के साथ गई नहीं है. क्यों नहीं गई है? क्योंकि यहाँ hurt नहीं है. लेकिन हम क्यों hurt बहुत जल्दी experience करते हैं? क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
0: वो दे उस intention से रहा
1: है. intention से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास energy वो वाली है ना. तो अगर मेरे अंदर वो energy इनसिक्योरिटी की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा न लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा. क्यों करेगा? क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव एनर्जी. सो व्हेन यू आर स्टेबल आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा कैसे बोलो, इनको बुरा तो नहीं लगेगा. कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा. क्यों बुरा लगेगा? बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज. लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर. नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है, शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती है,
0: सहज होते जाएंगे.
1: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा. अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी.
0: यू नो, सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं.
1: और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं है. तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें, ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है. क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीजों पर डिपेंडेंट हैं. आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहां डिपेंडेंसी है वहां फ्रीडम
0: नहीं है. बिल्कुल नहीं है. यस,
1: देयर इज, इट कैन नॉट बी टुगेदर. फ्रीडम और डिपेंडेंसी इकट्ठे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूं तो देन हाउ एम आई फ्री? फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई शुड बी फ्री.
0: होता यह है कि बहुत सी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं. आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूं? क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है. मेरी बहुत सी चीजें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं. आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं मेरी, मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है. तो अगेन दैट इज वाई द इनसिक्योरिटी.
1: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? द राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूं वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूं, स्टेबल हूं, और जो मैं कर रहा हूं बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
0: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूं मैं, अपनी बात कहने का जो फ्री

0: हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। मिस्टर शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है।
1: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जस्ट डोंट लिसन टू इट, जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ, अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना it will become simpler, don't have to do too much effort with that। तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फिर कर सकते हैं।
0: तो क्या हम अभी उन कुछ लम्हे जो है करें,
1: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखे। आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढे, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे, इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे। आई नाउ अंडरस्टैंड आई एम अ हैप्पी बींग। खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है। हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं। एज आई गो आउट टुडे एंड टुमारो टू वर्क, लेट मी जस्ट टेक दिस थॉट विद मी। I am a happy being, going to work and meeting people. And jaise hi is thought ke saath jaate ki I am already happy, to khushi fir mangne ki nahi, lekin auron ko dene ki, auron ke saath share karne ki shakti ban jaati. Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. Om Shanti.
0: Om Shanti. In fact, ये equation हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और आज इस thought के साथ कि मैं खुश हूँ, I'm a happy being, खुशी मेरी अपनी creation है, I can start giving. बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी

0: only be created by me. But what I do is, ke us cheez ko lekar I can create that energy. Ye laptop hai. To laptop mere andar happiness nahi create kar sakta. Ye ek physical cheez hai. Ye ek energy hai. Ye physical cheez us energy ko nahi create karta. But the thought that I create, now I have a laptop. You know, ye thought jo create kar liye, ye thought wo positive energy ko create kar deta hai. To sabse pehli realization ye hai ki koi bhi bahya cheez ya vyakti us feeling ko nahi create kar raha hai. Meri apni thoughts, kyunki humne chain mein dekha ki thought gives rise to feeling, nothing else. Koi bhi aur cheez wo feeling nahi create kar sakti hai. So now it's in my hand ki laptop lane ke baad main us achhi feeling ko create karu. या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं या वेट करती रहूं एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट. सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। ओम शांति। आपको याद होगा कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की। एंगर यानी गुस्सा यानी क्रोध। ऐसा लगता है कि जिंदगी का सच है गुस्सा करना या गुस्सा अपने आसपास चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने बात ये की थी कि ये गुस्सा, ये क्रोध जिसे हम मान के चलते हैं कि ये बहुत सहज है, ये आ जाता है, ये क्या करता है हमें, क्या होता है हमारे साथ जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। और दूसरी बात हमने ये समझा था, ये बिलीफ था कि दूसरों के कारण या फिर किसी सिचुएशन के कारण हमें गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन एक और बिलीफ सामने आया था कि गुस्सा जब भी आता है उसकी वजह मैं खुद होता हूं, क्योंकि मैं कर रहा होता हूं या मैं कर रही होती हूं वो गुस्सा। ये भी जरूरी नहीं कि आप इस बिलीफ को माने, जरूरी है कि हर बार जब क्रोध आए तो समझे, पॉज लें और उसके बाद उसे खुद अनुभव करें। और आगे चल के ये भी जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ और बिलीव हैं जो गुस्से या क्रोध से जुड़े हुए हैं। आज की इस कड़ी में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से और ऐसे कुछ मान्यताएं, बिलीव्स हैं जो हमने जिंदगी में शामिल कर ली हैं जो कि गुस्से से जुड़ी हैं। और इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आई थी वो ये गुस्से से जुड़ी हुई थी कि गुस्सा जो है वो एक मान्यता हम अभी तक जो चल रही थी कि दूसरों के कारण गुस्सा आता है। और आपने ये कहा था कि अगर हम देखें सही तरह से, अगर उसे जांचें तो गुस्सा हम खुद कर रहे होते हैं। तो ये भी अनुभव के ऊपर चलते हुए करना था। और कुछ और ऐसे बिलीव्स गुस्से से जुड़े हुए हैं, क्या हम थोड़ा और उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या है वो और बिलीव्स?
1: कई बार या ज्यादातर ऐसे होता कि परिस्थिति इस तरह हमें दिखाई देती या जो सामने वाले व्यक्ति ने जो बोल हमारे प्रति यूज किए वो इस तरह होते हैं कि एकदम से हम ऊपर से कहते और कोई चॉइस ही नहीं थी मेरे पास,
0: कोई चारा नहीं,
1: गुस्सा तो मतलब करना ही था उस टाइम, और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं जैसे उस टाइम। ये भी एक बिलीफ अंदर बना है कि आई हैव नो चॉइस, आई हैड टू गेट एंग्री। और जबकि वास्तविकता ये है कि, और ये क्यों हमारा बिलीफ

0: सिस्टम बना, क्योंकि बचपन से ही या एजुकेशन सिस्टम में या पेरेंटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी ने हमें ये सिखाया भी नहीं कि आई हैव अ चॉइस, कि मैं अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स अपनी चॉइस से क्रिएट करती हूँ। कहीं ना कहीं बचपन से ही वो चला आया कि वो जैसे अपने आप क्रिएट हो रहा है, तो वो किसी ने सिखाया नहीं, तो आई डिड नो, आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। जबकि वास्तविकता ये है कि एट एवरी स्टेप आई हैव 100% चॉइस।
1: सो इट मीन्स एट एवरी स्टेप आई हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, स्टार्ट लुकिंग एट इट एटलीस्ट।
0: सी इट्स लाइक दिस कि आप उठाकर ये कप अभी फेंक दो नीचे और इसको तोड़ दो, एंड आई विल शाउट एट यू, एंड देन इफ आई से ऊपर से कि आई हैड नो चॉइस, आपने किया ही उस तरह से, या आप कुछ ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज आप अभी अभी यूज करो, एंड आई जस्ट शाउट बैक एट यू एंड आई सेड आई हैड नो चॉइस, आपने बात ही इस तरह से की, यू नो, एंड आई विल एकदम से चेंज माई वे ऑफ टॉकिंग एंड आई विल से आपने बोला ही इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए थी आपसे? माई होल वे ऑफ टॉकिंग विल चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने जस्टिफाई कर दिया कि जब आप इस तरह से बात करेंगे तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, आई एम लाइक अ मशीन।
1: No, but do I have a choice? Yeah, this is...
0: You don't think you have a choice?
1: Yeah, but then actually, you know, अगर हम देखें तो एंगर को हम एक टूल की तरह भी यूज करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अपने आप,
0: मोर इम्पोर्टेंट इज डू आई हैव अ चॉइस, हम क्या कर रहे हैं वो इट्स डिफरेंट। डू आई हैव अ चॉइस या आई एम ऑटोमेटिक?
1: वी बिकम ऑटोमेटिक बट येस वी कैन हैव अ चॉइस।
0: नो, वी हैव अ चॉइस, इट्स नॉट, अगर हम ये भी कहें कि वी कैन हैव अ चॉइस, इसका मतलब ये है कि हो तो सकती है चॉइस, अभी नहीं है, अगर यूज करेंगे तो है, बट वास्तव में तो हर स्टेप पर है। आपने जो बुरा भला कहना था आपने कहा, अब उसके बाद मुझे क्या कहना है ये तो आप नहीं कंट्रोल करते। आई हैव अ चॉइस, एंड आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम अपने मूड के हिसाब से अपनी चॉइसेस को यूज करते भी हैं। कई बार मूड बहुत अच्छा, तो अगर आपने कुछ बहुत बुरा भी कह दिया, मेरा मूड ही इतना अच्छा है उस टाइम, क्या इसे
1: हाँ चलो छोड़ो, हाँ
0: तो व्हाट डिड दैट हैपन, आपने तो फिर भी उतना ही बुरा कहा था, और कई बार मूड अच्छा नहीं है तो आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, आई विल गो एंड आई से आई हैव नो चॉइस। दो टाइम्स आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दो डिफरेंट चॉइस, तो इट्स जस्ट दैट मेरे को कॉन्शियसली उस चॉइस को यूज करना है, और उसके लिए पहली बात ये बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, आई हैव नो चॉइस। क्योंकि अगर मैंने यहां अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई है, एवरी बिलीफ सिस्टम वो पूरा डैमेज कर रहा है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, आई हैव नो चॉइस मतलब मुझे गुस्सा करना अलाउड है, आई हैव अ चॉइस, मैं जो थॉट जो फीलिंग अभी क्रिएट करूं इट्स माई चॉइस, एंड आई आस्क माई सेल्फ which one do you want and which one would it always be, it will never be anger.
1: Actually usse bhi pehle sister Shivani ki ye choices pe bhi aate hain, ek aur baar rub in karna bahut zaruri hai that anger is bad, you know, somewhere we don't even accept it, we hum ye maan ke hi chalte ja rahe hain ki gussa kar bhi diya to kya ho gaya, kaam to nikla, kam se kam hum ye ehsaas hi nahi kar pate hain ki tabhi ye sari इस पे काम करना हम तभी शुरू करेंगे जब कहीं बेसिकली अंदर डीप विद इन वी वुड लाइक ही एंगर शुड गेट आउट ऑफ माय सिस्टम।
0: इसीलिए कहा था कि सबसे पहली चीज परिवर्तन के लिए फर्स्ट वो होगा अंडरस्टैंडिंग कि एंगर मेरे लिए हानिकारक है। जब तक वो नहीं होगा तो सेकंड स्टेज पर नहीं जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज एंगर इज अनहेल्दी फॉर मी, इट इज एब्सोल्यूटली बैड फॉर मी, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर मी। सेकेंड इज देन कि मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, एंड थर्ड इज कि कौन सी बिलीफ सिस्टम है जो मुझे चेंज करनी है। बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे जब तक उससे मुक्त होना नहीं चाहेंगे। तो अगर क्रोध अच्छा लगता है देन यू डोंट हैव टू गेट रेड ऑफ इट, इट्स ओनली अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको और आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, उनके लिए भी वो हानिकारक है, तो देन वाई नॉट, वॉट गुड, अगेन एंगर इज गुड, तो वॉट गुड इज इट गिविंग टू मी, वो देखना होगा। आई हैव नो चॉइस इस ऑप्शन को चेक करें, नहीं तो वो बार बार अंदर इतना स्ट्रांग प्रोग्राम्ड होगा कि आउट ऑफ चॉइस रिस्पॉन्सेज चलते जाएंगे। एंड अनदर वेरी कॉमन बिलीफ सिस्टम इज कि एंगर तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है, गुस्सा किया तो इसमें गलत क्या है। तो नॉर्मल की परिभाषा भी हमने कैसे बनाई, क्योंकि कर करके हमने इतनी बार गुस्सा किया, इतनी बार गुस्सा किया कि अब वो हमारा संस्कार बन गया है। तो कोई भी चीज बार बार करने से वो हमारा संस्कार बन गया एंड वी आर कंफर्टेबल विद इट, और तब जब हम

0: कर भी देते हैं तो हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है, यू नो इसमें गलत क्या है। तो जब तक हम ये बिलीफ रखेंगे कि एंगर नॉर्मल है, विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई विल हैव टू टेल माई सेल्फ कि एंगर एक नॉर्मल इंसान के लिए टोटली अबनॉर्मल है। एंगर इज अबनॉर्मल क्योंकि इट डजेंट मेक मी फील गुड। ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने आप को कहा एंगर अबनॉर्मल है मेरे लिए, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकिन पकड़ के रखा एंगर नॉर्मल है, तो नॉर्मल चीज तो मुझे करना अलाउड है। हर बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू लेट एंगर कम वेरी नेचुरली टू मी, एंड वही बिलीफ सिस्टम को चेंज किया माय बिहेवियर।
1: और हर बार जब भी मैं गुस्सा हुआ या हुई, कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम साथ में था तभी वो गुस्सा हुआ। सो अगेन ओके चेकिंग एक्चुअली इज दैट कि मैंने कौन से बिलीफ सिस्टम को लेके गुस्सा किया।
0: सेल्फ अवेयरनेस इज दैट। सेल्फ अवेयरनेस ये होगी कि जब आपको गुस्सा आने लगा है आप चेक करेंगे कि कौन से बिलीफ सिस्टम से मैं इसको अलाउ कर रही हूँ। वेन यू आर अवेयर यू चेक विच बिलीफ सिस्टम, एंड जैसे आप उस बिलीफ सिस्टम को देख लेते हैं ड्रॉप इट। यू नो जैसे सपोज आपने कुछ बुरा कहा मुझे अभी और मैंने जस्ट गुस्सा करना शुरू किया, एंड एकदम से आई एम अवेयर कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं देखूँ कौन सा बिलीफ सिस्टम है उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। चेक माई बिलीफ सिस्टम, उन्होंने तो दिलाया नहीं, ड्रॉप and I don't get angry.
1: So, Shivani, एक और belief system जो I can actually clearly see is कि anger is justified. जब एक छोटी सी बात मैं लेती हूँ कि suppose कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, कहीं point time है और appointment है या major मेरा program है या live है, और suppose my driver happens to be late और मेरा ब्लड प्रेशर तो ऊपर नीचे हो चुका है पहले ही ऑलरेडी, तो उसके आते ही उसके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो वो किया जाए, तो यहाँ ऐसा मुझे लगता है कि मुझे हर बार ये लगा कि जस्टिफाइड है, गुस्सा तो चढ़ेगा ही, मतलब इट्स जस्टिफाइड। और तब अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो यू नो वेयर हाउ टू चेंज दैट एक्चुअली।
0: व्हेन यू स्टिल फील कि वो यूजफुल है उससे,
1: नहीं यूजफुल नहीं है लेकिन
0: एक तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में आप है क्योंकि आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रोग्राम में वो रिफ्लेक्ट होगी, स्पेशली अगर आप इस तरह का प्रोग्राम करने आ रहे हैं। और दूसरा आप उन पर गुस्सा कर रहे हैं जो आपकी गाड़ी चलाने वाले हैं अभी, तो अगर उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो सिचुएशन कुड गो आउट ऑफ कंट्रोल। व्हाट गुड हैज कम आउट ऑफ इट उनको गुस्सा करने के बाद?
1: लेकिन मेरा मुझे लगता है कि मैंने वेंट आउट किया अपना।
0: वेंट आउट तो किया क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। लेकिन क्रिएट भी क्यों किया जब मुझे समझ में आ जाए अगर कि ये हानिकारक है मैं क्यों क्रिएट करूंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ क्या करना है जो कि आवश्यक है कि जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है आई जस्ट आस्क हिम व्हाट द रीजन इज कि आप लेट क्यों हैं। और अगर उनके पास एक वैलिड रीजन नहीं है तो हम एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इश्यू कर सकते हैं कि मुझे प्रोग्राम पे पहुंचने में लेट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आई वांट कि यू शुड नॉट बी लेट, अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सम एक्शन फॉर दैट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट। लेकिन उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे और फिर इतना एनर्जी रिलीज एंड फिर दूसरे का ब्लड प्रेशर इतना ऊपर नीचे, प्रोबेबली वो सब नहीं चाहिए।
1: लेकिन कई बार ये लगता है कि जब गुस्सा किया, मतलब ज्यादातर हम ज्यादातर लोगों में ये आती है बात कि गुस्सा कर दिया तो अगली बार यू नो ही हैज दिस माइंडसेट कि मुझे टाइम पे पहुंच जाना चाहिए अदरवाइज शी विल गेट एंग्री, तो इसके कारण काम हो जाता है। लोगों को ये लगता है कि मोटिवेट भी गुस्सा,
0: कि गुस्सा एक मोटिवेटर है कि ये काम कराता है और इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं और ये हमारे हर क्षेत्र पे यूज हो रहा है। पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज करते हैं
1: मोटिवेटर, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मतलब वो
0: इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर लेवल से लेकर के गुस्सा कराने से काम जल्दी हो जाएगा। एंड इवन आज हम देखते हैं लाइक यू नो जो सीनियर लेवल पर हैं कॉर्पोरेट्स में वो सोचते हैं कि अगर इनको गुस्सा कर दो ना तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे क्योंकि इनको लगेगा हमें करके दिखाना है। बट इट्स नॉट रियली गोइंग टू हैपन दैट वे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बार बार गुस्सा करते हैं और कईयों की पर्सनैलिटी भी ये बन जाती है कि वो डिलिबरेटली गुस्सा करते हैं ताकि उनको ये लगता है कि उनके गुस्सा करने से जो सामने वाला है वो कुछ नया सोचेगा, वो क्रिएटिव सोचेगा, वो

दिल अगर मुड़के इधर देखो मेरे मासूम कातिल तो जानोगे कि हम ही हैं तुम्हारे दिल के काबिल रूप बदल के चाहने वाला।

नमस्कार श्रोताओ, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हमसफर आरजे संजय। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाए के 7वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं वाद्य माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के वाद्य यंत्र की ध्वनि प्रेम भक्ति आनंद का अद्भुत संगम बन जाता है। जब कान्हा बांसुरी बजाते हैं तो केवल स्वर ही नहीं बल्कि हृदय की गहराई को तक प्रेम की धारा बहने लगती है। मृदंग की लय, वीणा की मधुरता और अन्य वाद्यों का संगम सब मिलकर भक्ति का ऐसा वातावरण रचते जिसमें

वृंदावन डूब जाता है। यही है वाद्य माधुरी, जहाँ वाद्य यंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा श्री कृष्ण का गीत।

श्रोताओ जय श्री कृष्ण। श्रोताओ श्री कृष्ण के साथी कला वाद्य माधुरी का परिचय होना अपनी जीवन सफर में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं था, वह उनके हृदय की आवाज थी। जब ये बांसुरी बजाते तो वृंदावन का हर जीव, गोपी, ग्वाल, पशु पक्षी उस स्वर में खो जाता। उनकी बांसुरी की तान आत्मा को ईश्वर को जोड़ने का माध्यम बन जाती। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ स्वर केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश बनकर संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। तो श्रोताओं सुनते हैं एक मधुर भक्ति गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओं, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने घर आंगन का काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती, गाय चरना छोड़कर उनकी ध्वनि की ओर खींच जाती। यह वाद्य माधुरी हमें बताती है कि ईश्वर की ध्वनि हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा के लिए तो कृष्ण की बांसुरी आत्मा की पुकार थी, प्रेम का वह स्वर जो सीधे हृदय को छू लेता है। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य सेतु बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओं, वाद्य माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन भी एक वाद्य है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो ईश्वर की ध्वनि उसमें गूंजने लगती है। कृष्ण की बांसुरी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा संगीत वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। यह केवल मनोरंजन नहीं

की साधना है। यह हर स्वर भक्ति का दीप बनकर आत्मा को आलोकित करता है। वाद्य माधुरी का दर्शन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की ध्वनि के साथ एकाकर करें, तभी हमारा अस्तित्व प्रेम भक्ति और आनंद का मधुर संगम बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं हम एक प्यारा और सुंदर गीत।

हे श्री कृष्ण श्रोताओ, श्रीमद् भागवत में कहा गया है वेणु कन्वयंतो गोविंद। इसका भावार्थ है कि जब गोविंद बांसुरी बजाते हैं तो संसार की सारी ध्वनियाँ मौन हो जाती है। यह श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण का वाद्य केवल संगीत नहीं बल्कि ईश्वर की पुकार है। उनकी बांसुरी का स्वर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है जो हर जीव की प्रेम और भक्ति की धारा में बह ले जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा और सुंदर गीत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पर आरजी सनी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग 50s एंड 60s के गाने जो हमेशा सुनाते आए हैं, और आज भी हम लोग एम अल्फाबेट वाले गाने सुनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं, जैसे मस्ती बरा है शमा, मतवाली ना ठुमक ठुमक चली जाए, महबूब मेरे महबूब मेरे। तो इस तरह के बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गाने आपको हम लोग सुनाएंगे आज के शो में। और कार्यक्रम की शुरुआत में चंद दो लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। कहते हैं जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रति फल देने की साजिश करता है ये सारा ब्रह्मांड। तो कहने का भाव ये है साथियों कि हम अगर सपने देखेंगे और उस अनुसार मेहनत करेंगे तो पूरी कायनात हमें वो सपना पूरा करने के लिए मदद करता है। बशर्त यही है, ईमानदारी से मेहनत हो, कड़ी मेहनत हो, तब जाके फल मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। आपको बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने वाला हूँ, मस्ती बरा। जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर मन्ना डे का गाया बहुत ही खूबसूरत गाना। जी हाँ, इसे संगीत से सवारा है दत्ताराम जी ने और ये फिल्म है परवरिश। जी हाँ, 1958 में ये फिल्म आई थी जो बहुत ही पॉपुलर रही। और ये फिल्म जो है राज कपूर, माला सिन्हा, ललिता पवार, महमूद अली पर पिक्चराइज किया गया था और इस फिल्म के डायरेक्टर थे एस बैनर्जी, एस एन बैनर्जी। इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। मत वाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। जी हाँ, ये अगला गाना है जिसका लिरिक्स इस तरह से है। ये लिरिक्स सुनकर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है और मुकेश साहब ने गाया है। शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है एक फूल चार कांटे, जो 1960 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म नाम से ही बहुत पॉपुलर रहा क्योंकि नाम भी ऐसा रखा गया जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। सुनील दत्त, वैदा रेमन, जॉनी वॉकर और धुमाल इस फिल्म के कलाकार रहे और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें जो हीरो है वो जो है इस फिल्म में लड़की को बताने के लिए या उससे शादी करने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए उस लड़की के चार चाचा हैं उनको जो है प्रभावित करता है कि मैं एक ऐसा स्पेशलिस्ट व्यक्ति हूं करके वो नाटक करता है। बप्पी सेन के निर्देशन में बनी ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत से सजा श्याम भवन के द्वारा निर्मित इस फिल्म में एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ताजिया ना झुक जाए, मतवाली ना ठुमक ठुमक चली जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। सूदिंग गाना था, एक फूल चार कांटे इस एल्बम से था। अब आइए आगे लेके चलता हूँ मैं 1967 की ओर, जहाँ पर एक फिल्म आई थी पत्थर के सनम। जी हाँ, ये भी फिल्म बहुत ही हिट रही, इसके सारे गाने ही बहुत ही खूबसूरत रहे। और जो गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो भी बहुत अच्छा है और एम अल्फाबेट से है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, लता मंगेशकर मुकेश जी का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए पत्थर के सनम का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स इस गाने के। आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाता है, जैसे मुझे कुछ लाइनें याद हो गई जो मैंने गुनगुना के आपको सुनाया। जी हाँ, मनोज कुमार, वैदा रहमान, मुमताज और प्राण पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म, और राजेश नाम का एक जो व्यक्ति है उस पर ये फिल्म बनी थी। और इसमें क्लाइमेक्स ये था कि एक ही लड़के से दो लड़कियां प्यार करती हैं, तो इसमें ये बड़ी मुश्किल वाली चीज आ जाती है और फिर बाद में सस्पेंस क्लियर हो जाता है। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाते ने और एनएन नाडियर वाला ने इस फिल्म को निर्माण किया था। तो चलिए, इस गीत को आपने सुना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। आइए

अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। जी हाँ, अब 1962 की तरफ चलते हैं। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आशिक। ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर रहा और इसमें भी एक गाना है जो एम अक्षर से। जी हाँ, आशिक जो फिल्म है ये राज कपूर, पद्मिनी, लीला चिटनिस और केस्टो मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया। और केस्टो मुखर्जी का आप जानते हैं कॉमेडी कलाकार है, उनके आते ही लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति भी अपने आप में एक चेहरे की मुस्कान बन जाती है। और यहाँ पर इस फिल्म में, आशिक फिल्म में, प्रताप नाम का एक व्यक्ति का किरदार है और वो अपने छोटे भाई गोपाल से बहुत प्यार करता है। और इस तरह से ये चीजें जो है दोनों भाइयों के बीच की कड़ी में एक प्रेमिका आ जाती है, तो ऐसा ही एक कहानी बताया गया है। तो चलिए, अब कहानी तो मैं पूरा नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारे गीत जो सुना रहे हैं। तो शैलेंद्र साहब का लिखा एक गाना है, लता मुकेश ने गाया है, इस गीत का आनंद उठाते हैं। महताब तेरा चेहरा, खुश रहो खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि काफी पॉपुलर गाने आप सुन रहे हैं और आप चलते हैं मेले की तरफ। जी हाँ, मेला आप शायद देखे होंगे लेकिन कई बार रंगीन दिवाली भी होती है जिसमें चिरागें जलती हैं। ऐसा ही कुछ भाव वाला अगला गाना है, राजेंद्र कृष्णा साहब का लेखा, लता मंगेशकर का खूबसूरत आवाज से सजा ये गाना, रवि साहब का संगीत है। फिल्म नजराना, जी हाँ, नजराना फिल्म 1961 में आई थी और नजराना ये शब्द ही अपने आप में आप सभी को पता चल गया होगा कि किस तरह का फिल्म होगा। एक गिफ्ट है, जी हाँ, और ये गिफ्ट किस तरह का काम करता है आइए देखते हैं। इस फिल्म की कहानी गीता पर है। गीता एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसके ऊपर ये फिल्म बनी और वो गरीब है लेकिन जीवन शैली जो है उसकी भी सभी लोगों की तरह आम जीवन शैली होती है। वो भी कॉलेज में पढ़ने जाती है और वहां पर फिर दोस्ताना हो जाता है और राज नाम का एक लड़के से उसकी जो है दोस्ती बन जाती है और फिर यहाँ से कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो चलिए कहानी को कभी फिर सुनाएंगे लेकिन अब सीधे मैं आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर सैनी। कहते हैं, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ दोस्तों, कहने का भाव यही है कि जब भी हम लोग अपनी मंजिल को तय करते हैं, जब चलने लगते हैं, तो बीच में कई रुकावटें आती हैं, कई पत्थर आ जाते हैं, उन्हें देखकर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें वहां पर रुककर रास्ता निकाल लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस खाबों के सफर में। अब ले चलता हूं आपको एक और खूबसूरत गीत की तरफ। जी हाँ, लेकिन एक खूबसूरत फिल्म भी थी, 1960 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें दिल अपना और प्रीत पराई ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी बताई गई। अब वो स्टोरी क्या है वो आपको सोचना है, समझना है। लेकिन इसके जो एक्टर थे वो बड़े दमदार एक्टर थे, किशोर साहू, मीना कुमारी, राजकुमार और नादिरा, इन पर ये फिल्माया गया था। और राज कपूर के दमदार डायलॉग्स भी आपने सुना होगा, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत पॉपुलर रही। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी कभी आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा और बहुत ही सुंदर स्टाइल से वो डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिल अपना और प्रीत पराई ये एक हिंदी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो 1960 में रिलीज हुई थी। इसमें किशोर साहू जो है एक्टर भी है तो डायरेक्टर भी है, और इस फिल्म के निर्माता कमल अमरोही हैं, जिन्होंने बहुत कम फिल्म बनाई लेकिन बहुत अच्छे फिल्में बनाई हैं। तो आइए इस फैमिली ड्रामा दिल अपना प्रीत पराई का ये खूबसूरत गाना अभी आपको सुनाते हैं, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है, शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, आपके SMS में एक हमारे प्यारे दोस्त ने बहुत ही प्यारा सा SMS मुझे भेजा था पिछले एपिसोड के लिए, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभी एक ही लाइन है लेकिन बड़ा खूबसूरत लाइन है, देखिए आप जरा ध्यान से सुनिए। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन थी जो मैंने आपको सुनाया। और चलिए अब आखिरी गाने की तरफ मैं आपको ले चलने वाला हूँ। ये आखिरी गाना आपके लिए नागिन इस एल्बम से जो 1954 में रिलीज हुई थी। ये एक फिल्म है जिसमें सुनील नाम के एक व्यक्ति पर पिक्चराइज किया गया है। प्रदीप कुमार, वैजंतीमाला, जीवन और IS जवार इस फिल्म के बड़े कलाकार हैं। इस फिल्म की कहानी इस तरह है, सुनील नाम का एक व्यक्ति शिकार करने जाता है और गलती से वो जो गोली चलाता है वो शिकार को न लगकर किसी सांप को लगता है और वो मर जाता है और वो नाग होता है। और ये देखकर नागिन वहां आती है और जिसने गोली चलाई थी सुनील उसको डसना चाहती है और वो बच निकलता है। फिर स्टोरी शुरू हो जाती है नाग

इन सुनील को मारने के पीछे दौड़ती है और सुनील हर बार बच जाता है। तो चलिए आखिरी में क्या होता है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और ये फिल्म नंदलाल जसवंत लाल ने डायरेक्ट किया था। हेमंत कुमार साहब का खूबसूरत संगीत से ये फिल्म सजी है और बहुत ही प्यारी जो म्यूजिक जो है इसका बहुत ही खूबसूरत है। और इस फिल्म का ये गाना जैसे कि मेरा दिल ये पुकारे आजा जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, हेमंत कुमार का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना आखिरी गाना आपको छोड़े जा रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत और कहना चाहूंगा अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठावान रहें, एक चित्त रहें, एकाग्र चित्त रहिए और पूरा ध्यान उस पर रहे आपका, और आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। और हाँ, आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर मैसेज करके अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट

0: राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स. कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है. सो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वॉन्ट देन नाउ वट हेज हैपनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो, मी माझ्या एका चारोळी मध्ये लिहिलंय की ती मी नी पाऊस यांचे आहे एक गुज, ती मी आणि पाऊस यांचे आहे एक गुज, आमचा वाद मिटेपर्यंत तू सोबत करतो रोज, आमचा वाद मिटेपर्यंत तू सोबत करतो रोज। तर ही माझी एक चारोळी होती श्रोते हो, आणि मी माझ्या चारोळीनंतर आपण आपल्या आजच्या शो मधल्या पुढच्या चारोळीकडे वळूया, जी आपल्याला पाठवलेली आहे विक्रम राजवर्धन सरांनी गगन बावडा कोल्हापूर येथून। सर लिहितायत की तू असताना नको यावा पाऊस, तूच असावीस चिंब होण्यासाठी। तू असताना नको यावा पाऊस, तूच असावीस चिंब होण्यासाठी। तू नसताना खूप बरसावा पाऊस, तू नसताना खूप बरसावा पाऊस, आतला पाऊस लपवण्यासाठी, आतला पाऊस लपवण्यासाठी। वा, तर तू नसताना पाऊस बरसला पाहिजे, कारण आतला पाऊस त्यामुळे लपवता येईल। खूप अप्रतिम धैर्य असं शब्दांकन या चारोळीमध्ये होतं। पुढच्या चारोळीमध्ये ज्योतिबा पाटील सरांनी किटवाड तालुका चंदगड जिल्हा कोल्हापूर येथून लिहिलंय, आणि सर लिहितायत तू मी आणि पाऊस कधी काळवेळ मानत नसतो, तू मी आणि पाऊस कधी काळवेळ मानत नसतो, प्रेमाच्या रिमझिम सरीत अंतकरणी भिजत राहतो, अंतकरणी भिजत राहतो। वा, तर प्रेमाच्या रिमझिम सरींमध्ये अंतकरणामधला पाऊस सरांनी शब्दबद्ध केलेला होता। सुंदर अशी ही चारोळी होती। पुढच्या चारोळी

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: स्वतंत्रता, लेखिका सुधा पुरी। पात्र परिचय, यश, सैंडी, वेदांत, पंकज, उन्नति, आकाश, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
2: आई कहाँ सब शांति के बारे में, मैं ध्यान दे रहा हूँ।
3: नहीं मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ।
2: बस
3: कहाँ है?
2: स्टॉप पे,
4: स्टॉप पे,
2: बस स्टॉप पे।
0: अरे भाई, तुम लोग कभी भी मस्ती करना नहीं छोड़ोगे?
5: कभी नहीं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
0: हाँ, क्या स्वतंत्रता के मूड में आए हो तुम सब?
2: क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से ही उस दिन का मूड सेट हो जाता है।
3: हाँ, और जानते हो जो तुमने कहा है वो सबसे पहले किसने कहा था?
6: हाँ मैं जानता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने, पर स्वराज्य के लिए।
1: तो जरा बताओ तो सही, इनका आदर से क्या नाम लिया जाता है?
5: लोकमान्य।
0: बहुत जानकारी रखते हो तुम सब। ये हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।
7: दीदी, कहते हैं ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे।
0: हाँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। इनका यह कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने आदर्श से लोकमान्य कहा जाता है।
8: मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्हें हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है।
7: पर दीदी, लोकमान्य का अर्थ क्या होगा?
0: पूरे संसार के लोगों द्वारा सम्मानित।
2: क्या वाकई ये लोगों को इतने अच्छे लगते थे?
0: जो भी व्यक्ति अपने देश की तरक्की के लिए काम करे वह सभी जगह सम्मानित होता है। सबसे पहले अपने देश को प्यार करोगे तभी तो संसार में किसी और को प्यार कर पाओगे।
3: समझ गए, वही प्रार्थना जो हम हमेशा स्कूल शुरू होने से पहले गाते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
0: मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, चलो एक बार गाते हैं। ये तुम्हारी विशेष प्रार्थना सभा में भी तो है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो।
6: हाँ, स्वतंत्रता दिवस की प्रार्थना सभा।

0: दीदी मुझे उस दिन एक स्पीच देनी है जिसमें किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कुछ बताना है।
1: तो ठीक है ना, तुम लोकमान्य तिलक के विषय में कुछ लिख लो।
2: हाँ, इनसे अच्छा और कौन होगा, इन्होंने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किए।
0: अच्छा बताओ ना दीदी क्या क्या।
2: वे बाल विवाह के विरुद्ध थे, उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ की।
3: हाँ वो इसलिए भी किया था ताकि लोगों तक स्वराज का संदेश पहुँचे, उस संदेश के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके।
2: बिल्कुल ठीक, भारतीय संस्कृति परंपरा और इतिहास पर लिखे उनके लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई।
4: दीदी हम चारों को मिलकर एक देशभक्ति गीत गाना है, कौन सा गाए कि सब में देश के लिए गर्व की भावना जाग जाए।
2: सोचने दो। अरे सोचना क्या है, सारे जहाँ से अच्छा गाना तो गाओ।
5: हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो सब मिलकर गाते हैं।

0: आहा, कितना मजा आया गाने में इसे।
1: इसे किसने लिखा है?
0: सारे जहाँ से अच्छा या तराना है हिंदी, उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी थी।
2: वाह, क्या बात है।
3: आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में कितने प्यार से इसे हमारे देश भारत में गाया जाता है।
1: इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है।
0: इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। इस इकबाल की रचना बंगे दारा में शामिल है। एक मजेदार किस्सा मशहूर है।
4: क्या बताना।
0: उस समय इकबाल लाहौर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्हें लाला हरदयाल ने एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया। इकबाल ने भाषण देने के बजाय यह गजल पूरी उमंग से गाकर सुनाई।
4: अच्छा।
0: यह गजल हिंदुस्तान की तारीफ में लिखी गई है और अलग अलग संप्रदायों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे सुरबद्ध किया था। जब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो शर्मा ने इसे गीत की पहली पंक्ति कही।
4: अच्छा।
2: चलो अब सब एक बार प्रार्थना सभा की तैयारी भी तो कर लो।
3: मुझे तो उस दिन बापू बन के

0: करना है और उनकी कही हुई बातों को उनके स्टाइल में कहना है।
1: बापू के लिए तो कहा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है महात्मा गांधी।
0: मेरे पास उनके कोट्स या कथनों की एक लिस्ट है। चलो सब एक एक करके पढ़ते हैं, फिर ये कार्यक्रम भी हम एक साथ ही प्रस्तुत कर देंगे, अच्छा लगेगा।
2: पर बापू कौन बनेगा?
1: सब बन जाना, मैं तो कहती हूँ अच्छा हो कि सारा देश ही बन जाए, पहनावे में, सोच में, आचरण में।
2: हाँ तो प्रैक्टिस कौन करेगा?
0: ये देखो लिस्ट, चलो शुरू करते हैं।
3: विश्वास, विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है।
0: प्रयोजन में दृढ़ विश्वास, अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रूप को बदल सकता है। शांति, शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है।
2: बदला, आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।
4: समय की बचत, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है।
5: प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदे अवश्य ही आप पर पड़ती हैं।
6: विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़े, विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए, जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।
1: बापू ने शत्रुओं की आदत पर क्या कमाल की बात कही है?
5: क्या?
1: पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे।
3: उनके वस्त्र कितने साधारण हुआ करते थे ना?
1: हाँ, और विचार ऊंचे, बल्कि चरित्र के बारे में उन्होंने कहा है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है।
7: आजकल प्रसन्न रहने के लिए कितनी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, पर खुशी पाने के लिए बापू की यह बात सबसे अच्छी लगती है।
8: खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो।
1: चलो आज काफी कुछ कर लिया है, काफी कुछ सोच लिया है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के लिए अब जरा सब खड़े होकर अच्छी तरह से राष्ट्रगान तो गाओ।
9: हाँ हाँ।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: इतिहास से, भूगोल से,
0: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
0: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
0: अतुल्य भारत। चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
0: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक। क्या आपको पता है कि भारत में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण और गीता जैसे दर्शन शास्त्र तो हैं ही, साथ ही साथ अगम शास्त्र, त्रिपिटका, गुरु ग्रंथ साहिब, धम्मपद जैसे हर धर्म के शास्त्र होने से संपूर्ण ज्ञान का कोश है। ऐसा बताया जाता है कि जब आक्रमणकारियों ने नालंदा के पुस्तकालय में आग लगाई तब वहाँ इतने ग्रंथ मौजूद थे कि वहाँ लगाई हुई आग कई महीनों तक ठंडी नहीं हुई थी। भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
0: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।
2: आला आला आला
3: ओ काय आला।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से

0: चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा। तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा। अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है, और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा, उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे पापा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: कुछ लोग होते हैं दोस्तों, जो अपने जीवन से न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन में उजाला लाते हैं, लेकिन पूरे देश का नाम पूरे जहान में रोशन कर जाते हैं। ज्योतिर्गमय की फाउंडर टिफनी ब्रार एक ऐसी ही मिसाल है। यशस्वी भारत की एक ऐसी यशस्वी बेटी है, जिन्होंने अपने जीवन से केवल अपने माँ बाप परिजनों का, अपने आसपास के लोगों का ही नहीं, लेकिन समूचे भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है। टिफनी जी, दोबारा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पिछले एपिसोड में आपने बताया कि भारत को भारत कौन सी बातें बनाती है। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत को यशस्वी बनने से रोकने वाली बातें कौन सी है, कौन सी वो बातें हैं जिन पे सुधार किया जा सकता है।
3: अनेकता में एकता कहा जाता है हिंदी में, एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडिया इज दैट हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, हम पंचुअल नहीं है, हम काफी सारी चीजों में डिसऑर्गेनाइज। जैसे कि अगर आपने मुझसे कहा कि 10 o'clock को इंटरव्यू में आना है, मुझे आना ही है, लेकिन अगर आपने ये इंटरव्यू 10 o'clock के लिए शेड्यूल किया और मैं 11 o'clock को

0: खुद ही से अपने एनर्जी से आपके किस कुछ हो सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में आप परिवर्तन ला सके, दैट इज ट्रू लव।
1: बहुत सुंदर। कर्तव्य क्या है? व्हाट इज ड्यूटी?
0: ड्यूटी इज टू डू व्हाट यू कैन फॉर द सोसाइटी, टू डू योर ड्यूटी फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनवायरमेंट, अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना, अपने काम अच्छे तरीके से ईमानदारी से करना, जो भी आप काम करते हैं ईमानदारी से करना। अभी जैसे कि कहा जाता है कि बाइबल में कहा है कि अपने मास्टर और स्लेव, बस खाली मास्टर देखने के लिए, द सर्वेंट शुड नॉट जस्ट डू हिज वर्क बिकॉज जस्ट टू गेन द फेवर ऑफ द मास्टर, खाली मास्टर का वो तारीफ पाने के लिए अपना काम ना करें, लेकिन जब आपका मास्टर आपको ना भी सीख रहा होता तो अपना काम ईमानदारी से करें।
1: मतलब किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है,
0: दिखाने के लिए नहीं करना, लेकिन अपने दिल से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा अपना काम,
1: अपने संतुष्टि के लिए, अपनी ईमानदारी से हमें चीज को करनी है। बहुत अच्छा बोला। तब ये है कि जो हमें करना है वो हमें करते रहना ईमानदारी से। इसके बाद के जो चार प्रश्न हैं उसका जवाब मुझे एक शब्द में चाहिए होगा। इज इट वेरी चैलेंजिंग फॉर यू?
0: आई विल ट्राई।
1: आई एम नो यू कैन विन इट। आप बहुत अच्छा जवाब देंगे। तो पहला सवाल, आपका फेवरेट सॉन्ग?
0: आई नो आई डोंट हैव अ फेवरेट सॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है।
1: ओके,
0: बट आई लव म्यूजिक, म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे।
1: किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं आप?
0: बहुत स्लो म्यूजिक, कैसे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है मुझे, लता मंगेशकर टाइप गाने बहुत पसंद है, एंड बहुत सारे मीनिंगफुल सॉन्ग्स पसंद है मुझे, हर लैंग्वेज के सॉन्ग्स, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मराठी, सब सॉन्ग्स, सब लैंग्वेजेस के अपने, एंड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है मुझे, जैसे फ्लूट, जैसे सितार, हारमोनियम, इंडियन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, तबला, क्लासिकल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है मुझे।
1: और अगर एक कोई कहानी आपके बचपन में जो आपने सुनी हो, पंचतंत्र में या कोई भी फोकलोर हो, या कोई भी ऐसी कहानी जो बचपन में आपने सुनी हो और जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, कौन सी है वो कहानी?
0: आई वुडन्ट से इट्स पंचतंत्र की तो कहानी नहीं है, लेकिन एक कहानी तो मैंने सुने, वो सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, द गूस एंड द गोल्डन एग, वो कहानी ने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है कि यू नो ग्रीडी नहीं बनना चाहिए हमें, क्योंकि वो गोल्डन एग्स के लिए वो इतने ये करते हैं, लाइक दे, आई मीन दे किल दैट बर्ड हु लेज द गोल्डन एग्स, कि वो लोग सोचते हैं कि अच्छा अभी ये बर्ड को किल करने से ये गोल्ड पूरा उसके बदन से हम निकाल सकते हैं, सो दैट इज ओवर ग्रीड, आई मीन दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर वो बर्ड को किल ना करके उस बर्ड को अच्छे से पालन पोषण करते तो उनको डेली वो गोल्डन एग मिलता ही रहता, लेकिन गॉड ने यू नो बिकॉज दे किल दैट बर्ड, जब वो देख रहे थे कि गोल्ड है कि नहीं बर्ड के अंदर, सो द बर्ड वॉज एन ऑर्डनरी बर्ड जस्ट लाइक एवरी अदर बर्ड, सो यू नो,
1: सो आई थिंक लोग जो है वो हमारे धैर्य और हमारे बुद्धि को खा जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो रह जाता है वो है पछतावा। सो दैट वॉज वेरी वेरी गुड स्टोरी टू ब्रॉट अस बैक। आखिरी दो सवाल एक एक शब्द में, भारत क्या है?
0: ये तो आपने पहले भी पूछ चुके हैं मुझसे, तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, इंडिया इज अ कंट्री विद अ वास्ट कल्चरल हेरिटेज, यही कहना चाहूंगी, हमारा बड़ा संस्कार, अनेकता में एकता।
1: तो एक शब्द में अगर उसको कहना हो तो अनेकता में एकता, या
0: अनेकता में एकता, या एक्जेक्टली।
1: टिफनी क्या है या टिफनी कौन है, एक शब्द में या एक फ्रेज में?
0: आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे पता नहीं है, वो तो आई मीन मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसको भगवान ने लेके आया है, ही ब्रॉट मी फॉर अ पर्पस, एंड आई होप आई कैन फुलफिल दैट पर्पस एंड गो बैक टू गॉड।
1: तो इस सवाल का जवाब हम और हमारे श्रोता आपको देते हैं, टिफनी प्रेरणा है, सो यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड आपसे कई लोग सीख रहे हैं, आपसे कई लोग बल पा रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू, आप जो हैं, आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: एंड मैं आपको एक मौका देना चाहूंगा कि आप अपने श्रोता साथियों को एक मैसेज दे सकते हैं, ज्योतिर्गमय के बारे में बता सकते हैं, हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू, यू आर फ्री टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद देम।
0: सो आप ज्योतिर्गमय के सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज्योतिर्गमय का फेसबुक पेज है, वेबसाइट है jyotirgamayindia.org, और अगर आप लोगों को किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना हो तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके लोगों के द्वारा हमें कनेक्ट कर सकते हैं, शांति प्रिया के द्वारा हमें, ही विल बी हैप्पी।

0: my details or मेरी ईमेल आईडी tiffanybrar@gmail.com है. इसको ऑर्गेनाइजेशन या मुझे भी आप किसी तरह से भी सपोर्ट करना चाहेंगे तो आप सपोर्ट कर सकते हो, नॉट ओनली विद मनी बट विद वर्ड्स, विद गुड वर्ड्स, विद एनकरेजमेंट, विद लव.
1: थैंक यू सो मच टिफनी जी. मतलब आज का ये दिन हम सभी साथियों के लिए, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि आज हम सबके साथ हैं. तो आपको बहुत बहुत थैंक्स दोबारा, और ऐसे ही हेल्दी, हैप्पी और एक्टिव रहिएगा, और आप अपने साथियों को इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिएगा. तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ दोबारा फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.
0: गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.
1: तो साथियों, आज के इस एपिसोड में टिफनी जी ने भारत का जो आयाम हमारे सामने रखा वो था कि भारत अर्थात विविधता. एक गुलदस्ते को जब हम देखते हैं तो उसमें कई रंग होते हैं, कई खुशबू होते हैं, और वो गुलदस्ता हमारा देश है, जहाँ मैं, आप, हम सब अलग अलग रंग बिखेर रहे हैं, अलग अलग खुशबू बिखेर रहे हैं. तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी. जुड़े रहिएगा हमारे साथ सुनने के लिए 90.4 FM रेडियो मधुबन से मैं आरजे शांतनु आपका शुक्रिया अदा करता हूँ.
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन.
3: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स. जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं. आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा. वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट. पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है. नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है. कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव.
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ठीक कर रहा है।
1: खिड़की को मंगे है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: रे। रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार श्रोताओ, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाए के 7वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं वाद्य माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के वाद्य यंत्र की ध्वनि प्रेम भक्ति आनंद का अद्भुत संगम बन जाता है। जब काना बांसुरी बजाते हैं तो केवल स्वर ही नहीं बल्कि हृदय की गहराई को तक प्रेम की धारा बहने लगती है। मृदंग की लय वीणा की मधुर

और अन्य वाद्यों का संगम सब मिलकर भक्ति का ऐसा वातावरण रचते जिसमें संपूर्ण वृंदावन डूब जाता है। यही है वाद्य माधुरी, जहाँ वाद्य यंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा श्री कृष्ण का गीत।

श्रोताओं जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, श्री कृष्ण के सात्विक कला वाद्य माधुरी का परिचय होना अपनी जीवन सफर में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं था, वह उनके हृदय की आवाज थी। जब ये बांसुरी बजाते तो वृंदावन का हर जीव, गोपी, ग्वाल, पशु पक्षी उस स्वर में खो जाता। उनकी बांसुरी की तान आत्मा को ईश्वर को जोड़ने का माध्यम बन जाती। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ स्वर केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश बनकर संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करता है। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक मधुर भक्ति गीत।

जय श्री कृष्ण श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ अपने घर आंगन का काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती, गाय चरना छोड़कर उनकी ध्वनि की ओर खींच जाती। यह वाद्य माधुरी हमें बताती है कि ईश्वर की ध्वनि हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। राधा के लिए तो कृष्ण की बांसुरी आत्मा की पुकार थी, प्रेम का वह स्वर जो सीधे हृदय को छू लेता है। यही है वाद्य माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य सेतु बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। श्रोताओ, वाद्य माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन भी एक वाद्य है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो ईश्वर की ध्वनि उसमें गुंजने लगती है। कृष्ण की

काफी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा संगीत वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना है, जहाँ हर स्वर भक्ति का दीप बनकर आत्मा को आलोकित करता है। वाद्य माधुरी का दर्शन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की ध्वनि के साथ एकाकर करें, तभी हमारा अस्तित्व प्रेम भक्ति और आनंद का मधुर संगम बन जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं हम एक प्यारा और सुंदर गीत।

जय श्री कृष्णा श्रोताओ, श्रीमद् भागवत में कहा गया है वेणु कन्वयंतो गोविंद। इसका भावार्थ है कि जब गोविंद बांसुरी बजाते हैं तो संसार की सारी ध्वनियाँ मौन हो जाती है। ये श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण का वाद्य केवल संगीत नहीं बल्कि ईश्वर की पुकार है। उनकी बांसुरी का स्वर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है जो हर जीव की प्रेम और भक्ति की धारा में बह ले जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा और सुंदर गीत।

જય શ્રી કૃષ્ણ શ્રોતાઓ, યહ છે સાચી કલા વાદ્ય માધુરી। ये कला हमें सिखाती है कि जीवन का हर स्वर ईश्वर की ध्वनि से जुड़ सकता है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो उसमें भी वही दिव्य संगीत गुंजने लगता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की आठवीं कला अलंकार माधुरी, यानी अलंकारों की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सुनते रहो, सुनते रहो। इसी के साथ सुनते हैं हम एक छोटा सा सुंदर गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटी

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अभी अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए, मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरीवन एल्स आल्सो बिकॉज इट वाज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए वापस लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है सो व्हाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside, and doing is what I'm doing outside. तो एक है being happy, and एक है doing something for getting happiness. तो एक है मैं हूँ खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे, यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: तो खुश होंगी, यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट

0: जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी,
1: अर्निंग ना, व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो.
0: सो व्हाइल इन दोस स्कूल इयर्स मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना देन आई विल बी हैप्पी. जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
1: आई एम अनहैप्पी,
0: अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी. तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए, फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना, व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी. फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट, फिर वो रिश्ता हुआ, देन आई से हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना देन आई विल बी हैप्पी. तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा.
1: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे सब और कुछ नहीं हो पाना, तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं और देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग,
0: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
1: वो अच्छे थे.
0: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट, लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस? या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया. अगर मैं यहां खड़े होकर कह रही हूं कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट. क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी. तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में. इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, आई डोंट थिंक, बट इट इज लाइक दैट. एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स. आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है. तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट, कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी. तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड. इन द प्रोसेस मेरा एक एक पल बीतता गया, हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा. कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी. अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंडेंट, लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है. तो डिपेंडेंट है, एक सेकेंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा? हाउ विल आई फील? कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी? जैसे
1: आई बी वेरी, यू नो, आई बी वेरी फियरफुल.
0: एक्सैक्टली, दैट्स द पॉइंट. दिस इज द क्रक्स. जिसको ये समझ में आ गया ना उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
1: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी,
0: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं? तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीजों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीजों पर वो डिपेंडेंट है मैं हर चीज के लिए डर में रहूंगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूंगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या. फियर इनसिक्योरिटी. जहां डिपेंडेंसी है वहां इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है और कच्चे कर जाऊं, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा?
1: ऑफकोर्स ये कि मेरा बॉस खुश रहे.
0: सी, इट्स ऑलवेज फियर. तो जहां फियर है वहां स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे? इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं है क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है, इन चीजों पर डिपेंडेंट है. और डिपेंडेंसी मीन्स फियर. डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी. डिपेंडेंसी मीन्स फियर. जैसे जैसे आप एक एक चीज से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटा कर देखो. सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूं मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है, नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू हाउ विल आई बी?
1: यू विल बी अ स्ट्रांग पर्सन. यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है.
0: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी?
1: You will be stable.
0: I will be very natural. I will not be.
1: You will not be artificial. Yes, you know.
0: See, because meri khushi aap pe dependent nahi hai. I can just be natural. I can be the way I am. Mujhe

0: वहाँ फ्रीडम
1: नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यस,
0: देयर इज, इट कैन नॉट बी टुगेदर. फ्रीडम और डिपेंडेंसी इकट्ठे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री? फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के इफेक्ट से आई शुड बी फ्री.
1: होता यह है कि बहुत सी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं. आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूँ? क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है. मेरी बहुत सी चीजें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं. आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं मेरी, मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है. तो अगेन दैट इज वाई द इनसिक्योरिटी.
0: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? तो राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूँ मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं.
0: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते. आज मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा, कर रहे हैं, खुश नहीं है, क्यों बोल नहीं पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन इज रियली नॉट देयर एक्चुअली. क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ. एंड व्हाई डू आई नॉट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ? बिकॉज आई एम स्केर्ड कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका डिसअप्रूवल तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे. ये इनसिक्योरिटी मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है. एंड देन हाउ कैन आई एवर बी हैप्पी विथ सो मच ऑफ डिसकम्फर्ट? दैट्स वाई वी रियलाइज कि ये सारा डिसकम्फर्ट, ये सारा अपहीवल, ये सारी इनसिक्योरिटी, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है.
1: आई हैव क्रिएटेड इट. एंड इनफैक्ट अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो इवन इफ यू नो दैट वंस यू आर स्टेबल इनसाइड, अगर हम इसी अनस्टेबिलिटी में, इसी जो भी हर्ट, एंगर जो भी है, उसमें जाके बात करेंगे,
0: इट वॉन्ट वर्क अगेन. तब इट विल नॉट वर्क. क्योंकि सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है. लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो कितने भी अच्छे तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क. वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है. वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स. हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं.
1: तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कहा,
0: पर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है. वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी. बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माई एनर्जी. मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ. तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू सी. एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुंचता है,
1: एनर्जी पहुंचे.
0: एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं, पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रहे हैं आज, क्या पहना हुआ है. वो फिर से बोला हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? हम देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छे तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई. एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाते, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस. कि मैं सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ, बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है. सोचो कुछ और, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए. फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी उनको अच्छा
1: बिहेव नहीं किया.
0: देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड. जस्ट हैव टू चेक दिस.
1: यस, यू नो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच वी लर्न टूडे. इसकी हमें जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर, हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं. वेरी ट्रू. और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफकोर्स मतलब कोई अपना है

0: हमारे किसी बोझ से अगर कोई नाराज हुआ है या कोई दुख में है तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था,
1: कौन सी एनर्जी भेजी,
0: समवेयर वी हैव टू सी। ये पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है, हर रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली। तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था। और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है।
1: दैट्स वाई, एंड जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव। सपोज मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा क्योंकि डिपेंडेंसी है। फिर मैंने इमिजिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ
0: शुरू हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस है। इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता। तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस, वी रियली नीड टू चेक। कोई मन में सवाल होता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। मिस्टर शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है।
1: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जस्ट डोंट लिसन टू इट, जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ, अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, it will become simpler, don't have to do too much effort with that। तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फिर कर सकते हैं।
0: तो क्या हम अभी कुछ लम्हे जो करें,
1: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखें। आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढे, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे, इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे। आई नाउ अंडरस्टैंड आई एम अ हैप्पी बींग। खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है। हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं। एज आई गो आउट टुडे एंड टुमारो टू वर्क, लेट मी जस्ट टेक दिस थॉट विद मी। I am a happy being, going to work and meeting people. And jaise hi is thought ke saath jaate ki I am already happy, to khushi fir mangne ki nahi, lekin auron ko dene ki, auron ke saath share karne ki shakti ban jaate. Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. Om Shanti.
0: Om Shanti. In fact, ये equation हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और आज इस thought के साथ कि मैं खुश हूँ, I'm a happy being, खुशी मेरी अपनी creation है, I can start giving. बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति।

सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, आज हम अपने एपिसोड में अष्टावक्र गीता के बारे में जानेंगे। कई वर्षों पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु हुए। वह धरती के महानतम ऋषियों में से एक थे जिन्होंने उस समय एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था। अष्टावक्र का मतलब है वह इंसान जिसके शरीर में 8 अलग अलग तरह की विकृतियां हो। शारीरिक रूप से अष्टावक्र विकलांग पैदा हुए। उनके दोनों पैर, हाथ, घुटने, छाती और गर्दन टेढ़े थे। बाद में जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए तो वह एक शास्त्रार्थ में गए जिसका आयोजन वहां के राजा जनक ने किया था। जनक महान प्रतिभाशाली और असाधारण व्यक्ति थे। जैसे ही अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, उनका रूप देखकर सभा के लोग हंसने लगे, जिस पर अष्टावक्र ने समझाया कि असली विद्वान चमड़ी या रूप से नहीं ज्ञान से पहचाना जाता है। राजा जनक ने बालक अष्टावक्र से पूछा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं

अपने मन से विषयों के विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत ही सेवन कीजिए। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि आप ये शरीर नहीं है, इस शरीर में विद्यमान चेतना है। आत्मा न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश तत्व से बनी है। आत्मा तो एक चैतन्य है, चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें, अर्थात स्वयं को आत्मा समझे, तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती। आत्मा इस शरीर में साक्षी दृष्टा के रूप में है। सुख, दुख, जय, पराजय, अहंकार, अपमान, अभिमान, ये सारे विकार मन से जुड़े हैं। आत्मा तो सदैव मुक्त है। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंधन में मानने वाला बंधा हुआ है। आत्मा मन में उठने वाले अनेक भाव भावनाओं की साक्षी है, चैतन्य है, ऊर्जा है। स्वयं को आत्मा ना समझकर देहभान में फंसना, शरीर को ही मैं समझना, यही सभी दुखों का कारण है। अष्टावक्र कहते हैं, शरीर आत्मा का घर है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है। जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकने लगते हैं और स्वयं को साक्षी समझने लगते हैं, तब हम अनेक बंधनों से और दुखों से छूटने लगते हैं। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है।

0: पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र ने हमें कई उपदेश दिए हैं। उनके मुख्य उपदेशों में स्वयं को शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य जानना, मोह और अहंकार का त्याग करना तथा इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त करना शामिल है। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं बल्कि उससे पूरी तरह अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह उसी पल सुखी शांत और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं मेरा ये कहना ही बंधन है। मैं कुछ हूं या यह मेरा है ऐसा सोचना ही बंधन है। जब मन में कोई कामना या लालच नहीं रहता तब न कोई बंधन बचता है और न ही मोक्ष की चाह। अष्टावक्र कहते हैं, बंधनों से मुक्त होने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, न ही जंगलों में जाकर रहने की जरूरत है। अष्टावक्र कहते हैं, आप जहां हो वहीं रहो, लेकिन अपने मन से ये मेरापन पूर्णतः निकाल दो। मेरा कहना यही एकमात्र बंधन है। हर कर्म करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए मेरेपन का त्याग यही मोक्ष का असली मार्ग है, यही मुक्ति है। सभी चीजों का उपयोग करते हुए भी किसी भी वस्तु में किसी भी पदार्थ में मोह ना रहे, मेरापन ना रहे, यही मुक्ति है। मोह और मेरापन दुख देता है और साक्षी अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, दुखों को पकड़े रहना यही दुखी होने का कारण है। जिसे पकड़ोगे वही दुख देगा। अपने नाम मान शान इच्छा अपेक्षा आशाएं, इनको पकड़े रहना, भूतकाल की बातों को पकड़े रहना, भूतकाल की स्मृतियों को पकड़े रहना, यही दुखों का असली कारण है। जितना हम अपने नाम से भी जुड़े रहेंगे, नाम को भी पकड़े रहेंगे, उतना हम दुखी होते रहेंगे। जितना भूतकाल की स्मृतियों को पकड़े रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। हमें दुखों ने नहीं बल्कि दुखों को हमने पकड़ा है, और जिस क्षण हम दुखों को छोड़ना शुरू करेंगे, किसी भी बात की पकड़ को जब ढीला कर देंगे, मन से हर एक बात को छोड़ना सीखेंगे, तब हम वास्तव में दुखों से मुक्त होंगे। हम अपने नाम से, अपने इमेज से, अपने मान से, अपने अभिमान से कितना अटैचमेंट में है। जब हम स्वयं को मुक्त करते हैं तब हम दुखों से भी मुक्त होते हैं। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं तब हम दुखों से भी मुक्त होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान ही मनुष्य आत्मा के दुखों का कारण है।

मनुष्य के अंदर ज्ञान जागता है तब वह सभी बातों को छोड़कर बंधन मुक्त अवस्था में रहने लगता है। हमें दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि हमें अपने अंदर के ज्ञान को जगाना है। जैसे ही ज्ञान जागेगा, अज्ञान अंधेरा दूर हो जाएगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: अब सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र कहते हैं दूसरों को माफ न करना यह हमारे दुखों का सबसे मुख्य कारण है। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों के प्रति नफरत रखना या उनके किए हुए अपमान को याद करना या किसी भी दुखदायी घटना को अपने मन में पकड़े रहना ऐसा ही है जैसे कोई जलते हुए अंगारे को अपने हाथों में पकड़ा हो। जब हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं तो ये इसी तरह है कि जलते हुए अंगारे को पहले अपने हाथों में उठाना और फिर दूसरों के ऊपर फेंकना। लेकिन जैसे ही हम अंगारे को अपने हाथों में उठाते हैं सबसे पहले हमें ही कष्ट होता है। नफरत द्वेष रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं ही जलता है। दूसरों को माफ न कर पाना ये वास्तव में स्वयं को सजा देने के बराबर है, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे तब तक हम नफरत की, द्वेष की, घृणा की आग में जलते रहेंगे। हम अपनी शांति को गवाते रहेंगे। हम एक बोझ को अपने सर पर उठाकर पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ी स्वयं को दी जाने वाली सजा है। अष्टावक्र कहते हैं जब हम माफ करना सीख जाते हैं तब हम स्वयं को दुखों से मुक्त कर पाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हमें माफ करना है लेकिन अनुभवों से सीखना भी है। हमें उस व्यक्ति के प्रति सावधानी भी बरतनी है। हमें असावधान होकर नहीं चलना है। अष्टावक्र कहते हैं कि परिस्थिति को स्वीकार ना करना यह भी दुखों का कारण है। जब हम परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं तब हम उसके बंधनों से, उसके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। हर मनुष्य आत्मा को भी जो जैसे हैं उन्हें हमें वैसे ही स्वीकार करना होगा। अपेक्षा रखना यह भी दुखों का एक कारण है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, हमें स्वयं को बदलने का प्रयत्न करना है। अष्टावक्र कहते हैं मन में उठने वाला क्रोध, भय, अपमान, अहंकार, अभिमान यह सब मन की भावनाएं हैं, यह आत्मा नहीं है। और तुम स्वयं चैतन्य आत्मा हो, मन की भावनाओं से अलग। जब आत्मा मन की भावनाओं से अलग अपने आप को साक्षी अवस्था में स्थित करती है, इन भावनाओं से अपने आप को अलग

करती है, तब वास्तव में हम जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। हम मन के गुलाम नहीं हैं, मन के मालिक हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा मालिक हैं, तब हम मन के गुलाम बन जाते हैं और भटकने लगते हैं, दुखों का अनुभव करने लगते हैं। आत्मा तो सदैव बंधन मुक्त है। श्रुति हो अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार एक स्वप्न मात्र है। कोई भी परिस्थिति सदाकाल के लिए नहीं होती। जो भूतकाल है वो एक स्मृति मात्र है। यहाँ पर सब कुछ अस्थिर है। अगर कोई स्थिर है तो वो है आत्मा। परिस्थितियों से, जीवन से शिकायत करना, यह भी एक दुखों का कारण है। जितना हम शिकायत करते रहेंगे, उतना हम दुखी होते रहेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर का चोला बदलने का नाम है, परिवर्तन का नाम है। आत्मा ना तो मरती है, ना उसे जलाया जा सकता है। आत्मा तो सदैव अमर, अजर, अविनाशी है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य आत्मा का दुखों का

मुख्य कारण भूतकाल की स्मृतियों में रहना या भविष्य की चिंता करना है। भूतकाल और भविष्य दोनों ही मनुष्य आत्मा के हाथ में नहीं है। भूतकाल एक स्मृतियों की तरह है जो बीत गया, और भविष्य की चिंताएं वो कल्पना मात्र है जो वास्तविकता नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर मनुष्य आत्मा वर्तमान में जीना सीख जाए तो वो सभी दुखों से मुक्त हो सकती है, क्योंकि वर्तमान क्षण में ही जीवन विद्यमान है। अष्टावक्र कहते हैं कि भूतकाल की स्मृतियों से या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग ज्ञान है। जहाँ पर ज्ञान जन्म लेता है वहाँ पर अज्ञान का अंधेरा समाप्त होता है, और इसी का फल स्वरूप मनुष्य आत्मा वर्तमान में जीने लगती है और जीवन भी वर्तमान में ही मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी मनुष्य आत्मा सदैव वर्तमान में जीती है। वो ना तो भूतकाल की स्मृतियों को याद करती है और न ही भविष्य की चिंताओं में रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जागरूकता ही सारे बंधनों से मुक्ति का मार्ग है, सदा जागरूकता। अष्टावक्र कहते हैं कि मन से लड़ना नहीं है, मन के भावनाओं को साक्षी होकर स्वयं को आत्मा समझकर निहारना है। मन को केवल देखना है, मन से लड़ना नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं आरोग्य और अध्यात्म दोनों ही जरूरी है। मन, शरीर और आत्मा की देखभाल जरूरी है। सेवा एक साधन है। जब हम किसी की देखभाल करते हैं तब हम खुद को बदलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं जीवन के अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने वाला बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, बीमारी में भी शांत रहता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अष्टावक्र कहते हैं नदी का स्वभाव बहते रहना है। अगर नदी बहना छोड़कर एक ही जगह पर स्थिर रह जाए तो पानी गंदा हो जाएगा। नदी कुछ भी बातों को अपने अंदर पकड़कर वहीं नहीं रुकती, उसका स्वभाव सतत बहना होता है। इसी प्रकार हमें भी दुखों की बातों को अपने अंदर पकड़कर बैठना नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ भी स्थिर स्थायी नहीं है। इस संसार में केवल आत्मा ही स्थिर चैतन्य स्थायी है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक बहुत प्यारा इंसान है दलप महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो,
1: खुशियों की फुहार लाएगी की हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। ओम शांति। आपको याद होगा कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की। एंगर यानी गुस्सा यानी क्रोध। ऐसा लगता है कि जिंदगी का सच है गुस्सा करना या गुस्सा अपने आसपास चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने बात ये की थी कि ये गुस्सा ये क्रोध जिसे हम मान के चलते हैं कि ये बहुत सहज है ये आ जाता है ये क्या करता है हमें क्या होता है हमारे साथ जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। और दूसरी बात हमने ये समझा था ये बिलीफ था कि दूसरों के कारण या फिर किसी सिचुएशन के कारण हमें गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन एक और बिलीफ सामने आया था कि गुस्सा जब भी आता है उसकी वजह मैं खुद होता हूं क्योंकि मैं कर रहा होता हूं या मैं कर रही होती हूं गुस्सा। ये भी जरूरी नहीं कि आप इस बिलीफ को माने। जरूरी है कि हर बार जब क्रोध आए तो समझे पॉज लें और उसके बाद उसे खुद अनुभव करें। और आगे चल के ये भी जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ और बिलीव हैं जो गुस्से या क्रोध से जुड़े हुए हैं। आज की इस कड़ी में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से और ऐसे कुछ मान्यताएं बिलीव हैं जो हमने जिंदगी में शामिल कर ली हैं जो कि गुस्से से जुड़ी हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आई थी वो ये गुस्से से जुड़ी हुई थी कि गुस्सा जो है वो एक मान्यता हम अभी तक जो चल रही थी कि दूसरों के कारण गुस्सा आता है। और आपने ये कहा था कि अगर हम देखें सही तरह से अगर उसे जांचे तो गुस्सा हम खुद कर रहे होते हैं। तो ये भी अनुभव के ऊपर चलते हुए करना था। और कुछ और ऐसे बिलीव्स गुस्से से जुड़े हुए हैं क्या हम थोड़ा और उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या है वो और बिलीव।
1: कई बार या ज्यादातर ऐसे होता कि परिस्थिति इस तरह हमें दिखाई देती या जो सामने वाले व्यक्ति ने जो बोल हमारे प्रति यूज किए वो इस तरह होते हैं कि एकदम से हम ऊपर से कहते और कोई चॉइस ही नहीं थी मेरे पास,
0: कोई चारा नहीं,
1: गुस्सा तो मतलब करना ही था उस टाइम और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं जैसे उस टाइम। ये भी एक बिलीफ अंदर बना है कि आई हैव नो चॉइस, आई हैड टू गेट एंग्री। और जबकि वास्तविकता ये है कि और ये क्यों हमारा बिलीफ सिस्टम बना, क्योंकि बचपन से ही या एजुकेशन सिस्टम में या पेरेंटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी ने हमें ये सिखाया भी नहीं कि आई हैव अ चॉइस, कि मैं अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स अपनी चॉइस से क्रिएट करती हूँ। कहीं ना कहीं बचपन से ही वो चला आया कि वो जैसे अपने आप क्रिएट हो रहा है, तो वो किसी ने सिखाया नहीं तो आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। जबकि वास्तविकता ये है कि एट एवरी स्टेप आई हैव 100% चॉइस।
0: इट मीन्स एट एवरी स्टेप आई हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग,
1: सी इट्स लाइक दिस कि आप उठाकर ये कप अभी फेंक दो नीचे और इसको तोड़ दो एंड आई विल शाउट एट यू एंड देन इफ आई से ऊपर से कि आई हैड नो चॉइस, आपने किया ही उस तरह से, या आप कुछ ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज आप अभी यूज करो एंड आई जस्ट शाउट बैक एट यू एंड आई सेड आई हैड नो चॉइस, आपने बात ही इस तरह से की, यू नो, एंड आई विल एकदम से चेंज माई वे ऑफ टॉकिंग एंड आई विल से आपने बोला ही इस तरह से तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए।

0: है आपसे।
1: माय होल वे ऑफ टॉकिंग विल चेंज, क्यों? क्योंकि मैंने जस्टिफाई कर लिया कि जब आप इस तरह से बात करेंगे तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, आई एम लाइक अ मशीन।
0: बट डू आई हैव अ चॉइस? दिस इज,
1: यू डोंट थिंक यू हैव अ चॉइस?
0: या बट देन एक्चुअली यू नो, अगर हम देखें तो एंगर को हम एक टूल की तरह भी यूज करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अपने आप,
1: मोर इम्पोर्टेंट इज डू आई हैव अ चॉइस, हम क्या कर रहे हैं वो इट्स डिफरेंट। डू आई हैव अ चॉइस या आई एम ऑटोमेटिक?
0: वी बिकम ऑटोमेटिक बट येस वी कैन हैव अ चॉइस।
1: नो वी हैव अ चॉइस, इट्स नॉट, अगर हम ये भी कहें कि वी कैन हैव अ चॉइस, इसका मतलब ये है कि हो तो सकती है चॉइस, अभी नहीं है, अगर यूज करेंगे तो है, बट वास्तव में तो हर स्टेप पर है। आपने जो बुरा भला कहना था आपने कहा, अब उसके बाद मुझे क्या कहना है ये तो आप नहीं कंट्रोल करते। आई हैव अ चॉइस। एंड आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम अपने मूड के हिसाब से अपनी चॉइसेस को यूज करते भी हैं। कई बार मूड बहुत अच्छा, तो अगर आपने कुछ बहुत बुरा भी कह दिया, मेरा मूड ही इतना अच्छा है उस टाइम, क्या इसे,
0: हाँ चलो छोड़ो, हाँ
1: तो व्हाट डिड दैट हैपन? आपने तो फिर भी उतना ही बुरा कहा था, और कई बार मूड अच्छा नहीं है तो आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, आई गो एंड आई से आई हैव नो चॉइस। दो टाइम्स आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दो डिफरेंट चॉइस, तो इट्स जस्ट दैट मेरे को कॉन्शियसली उस चॉइस को यूज करना है, और उसके लिए पहली बात ये बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, आई हैव नो चॉइस। क्योंकि अगर मैंने यहां अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई है, एवरी बिलीफ सिस्टम वो पूरा डैमेज कर रहा है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, आई हैव नो चॉइस मतलब मुझे गुस्सा करना अलाउड है, आई हैव अ चॉइस, मैं जो थॉट जो फीलिंग अभी क्रिएट करूं इट्स माई चॉइस। देन आई आस्क माई सेल्फ, which one do you want and which one would it always be? It will never be anger.
0: Actually usse bhi pehle sister Shivani ki ye choices pe bhi aate hain, ek aur baar rub in karna bahut zaruri hai that anger is bad, you know, somewhere we don't even accept it, we hum ye maan ke hi chalte ja rahe hain ki gussa kar bhi diya to kya ho gaya, kaam to nikla, kam se kam hum ye ehsaas hi nahi kar pate hain ki tabhi ye sari इस पे काम करना हम तभी शुरू करेंगे जब कहीं बेसिकली अंदर डीप विद इन वी वुड लाइक कि एंगर शुड गेट आउट ऑफ माय सिस्टम।
1: इसीलिए कहा था कि सबसे पहली चीज परिवर्तन के लिए फर्स्ट वो होगा अंडरस्टैंडिंग कि एंगर मेरे लिए हानिकारक है। जब तक वो नहीं होगा तो सेकंड स्टेज पर नहीं जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज एंगर इज अनहेल्दी फॉर मी, इट इज एब्सोल्यूटली बैड फॉर मी, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर मी। सेकेंड इज देन कि मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, एंड थर्ड इज कि कौन से बिलीफ सिस्टम है जो मुझे चेंज करनी है। बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे जब तक उससे मुक्त होना नहीं चाहेंगे। तो अगर क्रोध अच्छा लगता है देन यू डोंट हैव टू गेट रेड ऑफ इट, इट्स ओनली अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको और आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, उनके लिए भी वो हानिकारक है, तो देन वाई नॉट, वॉट गुड, अगेन एंगर इज गुड, तो वॉट गुड इज इट गिविंग टू मी, वो देखना होगा। आई हैव नो चॉइस इस ऑप्शन को चेक करें, नहीं तो वो बार बार अंदर इतना स्ट्रांग प्रोग्राम्ड होगा कि आउट ऑफ चॉइस रिस्पॉन्सेज चलते जाएंगे। एंड अनदर वेरी कॉमन बिलीफ सिस्टम इज कि एंगर तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है, गुस्सा किया तो इसमें गलत क्या है। तो नॉर्मल की परिभाषा भी हमने कैसे बनाई, क्योंकि कर करके हमने इतनी बार गुस्सा किया, इतनी बार गुस्सा किया कि अब वो हमारा संस्कार बन गया है। तो कोई भी चीज बार बार करने से वो हमारा संस्कार बन गया एंड वी आर कम्फर्टेबल विद इट, और तब जब हम उसको कर भी देते हैं तो हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है। तो जब तक हम ये बिलीफ रखेंगे कि एंगर नॉर्मल है, वी नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई विल हैव टू टेल माई सेल्फ कि एंगर एक नॉर्मल इंसान के लिए टोटली अबनॉर्मल है। एंगर इज अबनॉर्मल क्योंकि इट डजेंट मेक मी फील गुड, ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने आप को कहा एंगर अबनॉर्मल है मेरे लिए, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, लेकिन पकड़ के रखा एंगर नॉर्मल है, तो नॉर्मल चीज तो मुझे करना अलाउड है। हर बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू लेट एंगर कम वेरी नेचुरली टू मी, एंड वही बिलीफ सिस्टम को चेंज किया माय बिहेवियर।
0: और हर बार जब भी मैं गुस्सा हुआ या हुई, कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम साथ में था तभी वो गुस्सा हुआ। सो अगेन ओके, चेकिंग एक्चुअली इज दैट कि मैंने कौन से बिलीफ सिस्टम को लेकर गुस्सा किया।
1: सेल्फ अवेयरनेस इज दैट, सेल्फ अवेयरनेस ये होगी कि जब आपको गुस्सा आने लगा है आप चेक करेंगे

0: से बिलीफ सिस्टम से मैं इसको अलाव कर रही हूँ. वेन यू आर अवेयर यू चेक विच बिलीफ सिस्टम एंड जैसे आप उस बिलीफ सिस्टम को देख लेते हैं ड्रॉप इट. यू नो जैसे सपोज आपने कुछ बुरा कहा मुझे अभी और मैंने जस्ट गुस्सा करना शुरू किया एंड एकदम से आई एम अवेयर कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं देखूं कौन सा बिलीफ सिस्टम है उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया. चेक माय बिलीफ सिस्टम. उन्होंने तो दिलाया नहीं. ड्रॉप एंड आई डोंट गेट एंग्री.
1: शिवानी एक और बिलीफ सिस्टम जो आई कैन एक्चुअली क्लियरली सी इज कि एंगर इज जस्टिफाइड. जब एक छोटी सी बात मैं लेती हूँ कि सपोज कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है कहीं पॉइंट टाइम है और अपॉइंटमेंट है या मेजर मेरा प्रोग्राम है या लाइव है और सपोज माय ड्राइवर हैपन्स टू बी लेट और मेरा ब्लड प्रेशर तो ऊपर नीचे हो चुका है पहले ऑलरेडी तो उसके आते ही उसके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो वो किया जाए तो यहां ऐसा मुझे लगता है कि मुझे हर बार ये लगा कि जस्टिफाइड है. गुस्सा तो चढ़ेगा ही मतलब इट्स जस्टिफाइड. और तब अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो यू नो वेयर हाउ टू चेंज दैट एक्चुअली.
0: व्हेन यू स्टिल फील कि वो यूजफुल है उससे.
1: नहीं यूजफुल नहीं है लेकिन
0: एक तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में आप है क्योंकि आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए नहीं तो आपके प्रोग्राम में वो रिफ्लेक्ट होगी स्पेशली अगर आप इस तरह का प्रोग्राम करने आ रहे हैं. और दूसरा आप उन पर गुस्सा कर रहे हैं जो आपकी गाड़ी चलाने वाले हैं अभी तो अगर उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो सिचुएशन कुड गो आउट ऑफ कंट्रोल. व्हाट गुड हैज कम आउट ऑफ इट उनको गुस्सा करने के बाद.
1: लेकिन मेरा मुझे ही लगता है कि मैंने वेंट आउट किया अपना.
0: वेंट आउट तो किया क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था. लेकिन क्रिएट भी क्यों किया जब मुझे समझ में आ जाए अगर कि ये हानिकारक है मैं क्यों क्रिएट करूंगे. ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ क्या करना जो कि आवश्यक है कि जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है आई जस्ट आस्क हिम व्हाट द रीजन इज कि आप लेट क्यों हैं. और अगर उनके पास एक वैलिड रीजन नहीं है तो हम एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इश्यू कर सकते हैं कि मुझे प्रोग्राम पे पहुंचने में लेट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आई वांट कि यू शुड नॉट बी लेट अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सम एक्शन फॉर दैट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट. लेकिन उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे और फिर इतना एनर्जी रिलीज एंड फिर दूसरे का ब्लड प्रेशर इतना ऊपर नीचे प्रोबेबली वो सब नहीं चाहिए.
1: लेकिन कई बार ये लगता है कि जब गुस्सा किया मतलब ज्यादातर हम ज्यादातर लोगों में ये आती है बात कि गुस्सा कर दिया तो अगली बार यू नो ही हैज दिस माइंडसेट कि मुझे टाइम पे पहुंच जाना चाहिए अदरवाइज शी विल गेट एंग्री. तो इसके कारण काम हो जाता है. लोगों को ये लगता है कि मोटिवेट भी
0: गुस्सा एक मोटिवेटर है कि ये काम कराता है और इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं और ये हमारे हर क्षेत्र पे यूज हो रहा है. आज पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज करते हैं
1: मोटिवेटर. मैं गुस्सा हो जाऊंगा मतलब वो
0: इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर लेवल से लेकर के गुस्सा कराने से काम जल्दी हो जाएगा. एंड इवन आज हम देखते हैं लाइक यू नो जो सीनियर लेवल पर हैं कॉर्पोरेट्स में वो सोचते हैं कि अगर इनको गुस्सा कर दो ना तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे क्योंकि इनको लगेगा हमें करके दिखाना है. बट इट्स नॉट रियली गोइंग टू हैपन दैट वे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बार बार गुस्सा करते हैं और कईयों की पर्सनैलिटी भी ये बन जाती है कि वो डेलिबरेटली गुस्सा करते हैं ताकि उनको ये लगता है कि उनके गुस्सा करने से जो सामने वाला है वो कुछ नया सोचेगा वो क्रिएटिव सोचेगा वो यू नो कुछ करके दिखाएगा या जितना देर में करने वाला था उससे जल्दी करके दिखाएगा क्योंकि उसको डर है कि मैंने गुस्सा किया या गुस्सा कर दूंगा. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस जो सामने वाला है वो स्विच ऑफ हो जाता है. जब उसका सीनियर उसे गुस्सा कर देता है वो जो परफॉर्म कर सकता था ना एक्चुअली उससे कम परफॉर्म करता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो उस सीनियर से तो बिल्कुल दूर हो जाता है बिल्कुल. और यहां तक कि आपको वो सीनियर बहुत ज्यादा पसंद ही नहीं आप अवॉइड करना शुरू करते हैं कि इनसे तो बहुत ज्यादा मिलना ही ना पड़े. किसी भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट. और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों गुस्से से नहीं मिलने वाली तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अगर हमें बिल्ड करनी है एक रिलेशनशिप में तो गुस्सा उस रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है. जब हम गुस्सा करते हैं बार बार स्पेशली एज अ सीनियर अगर हम अपने जूनियर्स पे या एज अ पेरेंट अपने बच्चों पे बार बार गुस्सा करते हैं हम प्रूव कर रहे हैं कि मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है मेरी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. आप मेरी क्या रिस्पेक्ट करोगे मेरी खुद ही रिस्पेक्ट नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एवरी टाइम. तो एंगर इज नॉट द टूल क्योंकि एज अ लीडर एज अ टीम लीडर या एज अ पेरेंट आपको करना क्या है.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वतन का रात के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गढ़मंडला के राजा थे शंकर शाह और उनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। पिता पुत्र दोनों ही क्रांतिकारी कविताएं लिखा करते थे। राजा ने अपने एक बेईमान कर्मचारी गिरधारी दास को अपने राज्य से निकाल दिया था। तब उस कर्मचारी ने पिता पुत्र द्वारा क्रांतिकारी कविताएं लिखे जाने की बात अंग्रेजों को न सिर्फ बताई बल्कि भावार्थ भी समझा दिया। कविता लिखने के जुर्म में उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया। अंतिम इच्छा स्वरूप उन्होंने उसी कविता का पाठ किया जिसकी वजह से उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा था। कविता समाप्त होते ही दोनों का शरीर मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनकर दूर तक बिखर गया और दूर तक बिखर गई क्रांतिकारी पिता पुत्र की शहादत की कहानी, जिसमें कलम का मुकाबला तोप ने किया था। तारीख थी 18 सितंबर 1858। उनकी शहादत पर कुदरत ने विद्रोह किया और आकाश में घन गरज उठे।
1: हर रे।

13 सितंबर 1929 हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चिरस्मरणीय और महत्वपूर्ण तारीख। किसी भी राष्ट्र के जीवन में इस प्रकार की तिथियों का बहुत ही गौरवपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। उन दिनों जब हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मोर्चा ले रहे थे, तब विप्लवी यतीन्द्रनाथ दास ने लाहौर जेल में अनशन कर तिल तिल करके अपने प्राण देकर राष्ट्र को एक महान बलिदान का पाठ पढ़ाया था। उनके बलिदान ने हमें वाकिफ करवाया था कि आजादी की कीमत क्या होती है।

बाबा पृथ्वी सिंह का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे ले रही थी। पहले वे भारत से बर्मा गए, फिर अमेरिका पहुंचकर उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत में गदर फैलाकर अंग्रेजों की खिलाफत करना। भारत आकर वे अन्य क्रांतिकारियों से मिले। जब वे पुलिस के हाथ लगे तो उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। पहले उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, बाद में जनता के विद्रोह करने पर सजा को काले पानी की सजा में बदल दिया गया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्हें सद्भावना स्वरूप रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद से मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद जोड़ लिया और पृथ्वी सिंह से पृथ्वी सिंह आजाद बन गए। बाबा पृथ्वी सिंह उन भाग्यशाली क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश को आजाद होते हुए देखा था, गुलामी के अंधेरों से निकलकर एक नया संसार बनते हुए देखा था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव,

प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच.
1: आज फिर से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ.
2: जरूर.
1: We do not see the world through a window. We do not see the world through a window, but through a mirror. आईने के अंदर. Everything we discern is comparatively held to the vision with which we see ourselves.
2: Look at the line. We do not see the world through the window. We see the world through a mirror. दुनिया को हमें खिड़की के थ्रू नहीं, एक आईने के थ्रू देख रहे हैं. दुनिया को अगर हमें खिड़की के थ्रू देखते, खिड़की के थ्रू तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है.
1: तो डिटैच होके देखते हैं.
2: जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी थ्रू अ विंडो. बट इन द मिरर व्हाट डू आई सी? आईने में व्हाट डू आई सी? नो, आईने में आई सी ओनली माई सेल्फ.
1: वही तो मैंने आपसे कहा.
2: आई कैन सी हियर इज द वर्ल्ड. सपोज दिस इज द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड फॉर मी. लेट्स से ये दुनिया है, मुझे इसको देखना है. अगर मैं आपको खिड़की के थ्रू देख रही हूँ, मतलब खुला है सब, आई कैन सी यू एज यू आर. लेकिन अगर बीच में एक आईना है, मिरर है, आईने में आई कैन सी ओनली माई सेल्फ. थ्रू वॉट आई सी माई सेल्फ देन आई सी यू. सो आई डू नॉट सी यू एज यू आर. ये बहुत डीप लाइन है और इसीलिए उसने लिखा कि बहुत कम हम लोगों को और सिचुएशंस को वो जैसे हैं वैसे परख सकते हैं. वी डू नॉट डिसर्न देम एज दे आर. जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब हम औरों को चेंज करने के लिए कहते भी हैं, या औरों को उनकी आदत के लिए, संस्कार के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपने कहा इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आता, एट दैट टाइम वी आर सीइंग पीपल थ्रू अ मिरर, नॉट थ्रू द विंडो.
1: ये सारी बातों में आता है, कर्टेसी में, खाने में, उठने में,
2: हर चीज में,
1: ताकत में, सेहत में, मतलब कॉमन सेंस में, हर जगह बोल देते हैं इतना तो होना चाहिए.
2: कॉमन सेंस के लिए कितना इजीली बोलते हैं, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है.
1: कर्टेसी पे कम बोलते हैं, कम से कम खड़े तो हो जाते.
2: yes.
1: नमस्ते झुक के नहीं करते, एटलीस्ट दिस बार जाए तो पूछ लेते. नहीं पिलाओ पहले पूछ तो लेते. मतलब हर चीज में हेलो.
2: सब कुछ हम आईने के थ्रू कर रहे हैं.
1: किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं. मेरे घर में एक झगड़ा हुआ था कि सम गेस्ट ऑफ माइन, उन्होंने मेरे भाई का फोन उठा दिया. तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका से फोन कर रहा है मेरा भाई. तो उन्होंने जल्दी से फोन लाके मेरे को दिया. तो बोले फोन उसको वापस दो. वापस दे कि आपको इतनी कर्टेसी नहीं है, पहले हेलो हाय नमस्ते कुछ भी. तो वो बोल रहे भाई मैं समझी आप अमेरिका से लाइटनिंग शाइटनिंग पता नहीं क्या आपके पैसे लगेंगे. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
2: कॉन्फ्लिक्ट का कितना बड़ा रीजन है. और इसीलिए जैसे वो लाइन थी कि इसीलिए हम लोगों को और सिचुएशंस को परख ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको हम नहीं देख रहे हैं. हम उनको आईने के थ्रू देख रहे हैं. आईने के थ्रू देख रहे हैं मतलब अपने संस्कार के थ्रू जब हम उनको देखेंगे तो वो जो हैं जैसे हैं वैसे हम उनको नहीं देखेंगे. राजयोग मेडिटेशन से जब हम अपने माइंड को साइलेंट करना शुरू करते हैं, एक माइंड में टर्बुलेंस चल रही है, अपने संस्कार, ईगो का कभी, हर्ट का कभी, एंगर का कभी, इरिटेशन का, ये जब चल रहे हैं और इनके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे तो दूसरे जो हैं जैसे हैं वो कभी नहीं दिखाई देंगे.
1: धुलती चेहरे पर हम आईना पोछते रहे.
2: बिल्कुल
1: चेहरे पे अपना नहीं पोछ रहे हैं.
2: अब सेम चीज जब ये माइंड

0: साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो अक्वायर्ड संस्कार है वो साइलेंट है, तब सामने वाला जो है जैसे है वैसे दिखाई देगा। इसीलिए परखने की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। परखने की शक्ति अगर सही नहीं होगी तो निर्णय शक्ति सही नहीं होगी, निर्णय शक्ति सही नहीं होगी तो कर्म सही नहीं होगा, कर्म सही नहीं होगा तो भाग्य सही नहीं बनेगा। तो एक परखने की शक्ति में अगर गलती हुई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस समय सही क्या है, गलत क्या है, एक छोटी सी गलती का इफेक्ट मेरे भाग्य तक पड़ेगा।
1: ये जो दोनों रिश्तेदार थे, जो जिसने फोन मेरे घर पे उठाया और जिसने अमेरिका से रिश्तेदार ने फोन किया, अब मेरे हिसाब से दोनों राइट है। वो कहता है कि तो तुम छोटे हो उम्र में, पूछो तो सही भाई कैसे हो, कैसे है, क्या हाल है। तो वो बोल रहे है कि नहीं, मैं तो ये समझ रही थी कि आपका पैसा लगेगा।
0: ये जो आपने अभी कहा ना कि मेरे हिसाब से दोनों राइट है, क्योंकि एक्चुअली दोनों राइट है, लेकिन किसको ये दिखेगा कि दोनों राइट है, जो दोनों से डिटैच्ड होके सिचुएशन को देख रहा है। लेकिन उन दोनों को नहीं दिख रहा कि दोनों राइट है,
1: पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू वो बोलता है कि भी तुम नमस्ते तो करो।
0: उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, लेकिन राइट परखने के लिए हम अगर डिटैच होकर देखते तो हमें ये भी दिख जाता कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो राइट है। दिस आपको कैसे दिख रहा है?
1: अगर सपोजिंग वो बंदा पूछ लेता कि बेटा तुम मेरे को आज हेलो तो करो, क्या बात है, नमस्ते भी नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है।
0: जैसे हमें कोई ऐसा बिहेव करेगा जो हमारे संस्कार के साथ अग्री नहीं करता, हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम रिएक्ट कर गए ना। जब रिएक्ट कर गए तब तो एनर्जी सारी चेंज हो गई उसके बाद,
1: रोती भी आई मैं,
0: क्योंकि हमने यहाँ थॉट क्रिएट कर लिया वो गलत है। द मिनट आई एम सीइंग अ संस्कार विच इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड, माय संस्कार सेज कि जिसने फोन उठाया उसको प्यार से पहले बात करनी चाहिए, विश करना चाहिए, कर्टेसी। माय प्रोग्रामिंग इज फिक्स्ड, तो मेरी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मैंने उनको देखा, आईने के थ्रू देखा, तो मैं ये देख ही नहीं पा रहा कि सामने वाले ने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसका नजरिया क्या था कि अमेरिका से फोन है, वाई टू वेस्ट देयर पर मिनट एनी। आप उस सिचुएशन के अंदर नहीं है, यू नो, एक होता है सिचुएशन के अंदर घुसे हुए और एक है सिचुएशन से साक्षी है। वो दो लोग सिचुएशन के अंदर हैं। अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई, एक। फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई तो वो रोते हुए आई, उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने नहीं
1: समझा,
0: जोर से डांटा ना।
1: इतनी भी अकल नहीं है तो
0: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा। द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया।
1: जिसे फोन उठाया उसको क्या समझ में आया, क्यों झड़ रहा है मुझे।
0: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था। जब तक हम वो नहीं देखेंगे हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे, इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है। खिड़की नहीं खुली ना
1: मिरर के थ्रू,
0: मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको। बहुत सारी, सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
1: छोटी नहीं हुई ना, ये बात इतनी बड़ी बाद में,
0: लेकिन ये बात
1: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी, महीनों चला इसको कि बोलती मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा।
0: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके, ना लंबा चलता है। चीज इतनी होती है, इतनी सही नहीं परखी तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं। ये कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया। ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि है जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं। इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर रिलेट को, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया नेट को छोड़ना है,
1: पावर टू टॉलरेट,
0: फिर पावर टू टॉलरेट सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना, तीसरा एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति। लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति, मीन्स राइट रॉन्ग सही गलत। हम बचपन से सीख रहे हैं सही गलत की परख होनी चाहिए, परखो तो सही क्या था गलत क्या था, सच क्या है झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो। वी हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड। लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे, दैट वॉज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है गलत क्या है देखो तो, नो बट अ लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है राजयोग मेडिटेशन से, जो हम अपने पर वर्क करते हैं और हर एक अनुभव भी करेगा उसको, कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ, साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है, हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती है कि लॉजिकली राइट क्या है रॉन्ग क्या है, नॉलेज क्या कहती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन वो होती है एक इनेट अंदर से एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते थे, नहीं जब कहते अंदर की आवाज कहती है ये राइट है ये रॉन्ग है।
1: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता
0: है ना,
1: और कई बार बोलते है मत कर मत बोल और मैं हमेशा फंसा।
0: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा।
1: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय अंदर वाला,
0: नॉट लिसनिंग। हाँ
1: सिस्टर, एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस, तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो। तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा, मैंने क्यों, माली है उसके पास चाबी है, वहाँ सब खाना पका के देंगे। वहाँ गया तो माली के घर में किसी की डेथ हो गई, वो गांव चले गए।
0: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना, वो एक परखने की शक्ति है जो अक्वायर्ड बातों से नहीं, लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं, जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता, लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है, आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है। नहीं, कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए, मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है। वो जो आवाज आती है, वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा, वो हमेशा राइट निकलेगा। इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर अस, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर।
1: विवेक, मेरा बेटा और मैं एक अपने लिए लैंड लेने गए थे, तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछ रहे बोलने लगा, और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला ले, उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है। बोले डैडी आई लव इट, डैडी मुझे अच्छी लगी। मैंने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। ना नंबर पूछो ना वास्तु पूछो, तुम और मैं दोनों फंसेंगे, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा, ये हाथ से चीज चली जाएगी।
0: सही बात है।
1: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से।
0: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज एंड वन इज इनेट नॉलेज दैट द सोल हैज।
1: दिस इज ब्यूटीफुल, आपने मुझे याद दिला दिया।
0: तो सही और गलत की जो आवाज, जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी, जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है, इससे पूछे इससे पूछे, ये करें इधर पढ़े उधर चेक करें। अगर हम सिर्फ दो मिनट साइलेंस में बैठ जाए, सिर्फ दो मिनट, हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है। We don't need to find out anything from anyone or anywhere. Every soul knows the answer to every question, every issue and every problem in their life.
1: You're so right. ये practically मैंने किया sister. विवेक को किसी ने बोला आप member of parliament के youngsters की जरूरत है आज, आप क्यों नहीं किसी party से ticket लेके लड़ते, this that, you're so good in speech. तो मेरे से वो advice लेने आया। मैंने कहा एक काम करो, बाबा के सामने बैठो, मंदिर में बैठो, मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो, आपको जवाब आएगा।
0: बस
1: वो गया ही नहीं।
0: एक बार परखा सही, फिर निर्णय लेना इज इजियर। इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना। तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में, इवन अब अगर जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है दो लोगों के बीच, जैसे हमने देखा कि दूसरे का संस्कार हम क्यों नहीं परख पा रहे, दूसरे का संस्कार क्यों हम दूसरे को अपने संस्कार के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम ईगो से कनेक्टेड है। हाँ
1: क्यों इनेट से कनेक्टेड,
0: हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है ना। अगर हम इनेट से
1: कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे तो मैं इनेट से कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, आप

0: स्ट्रेटेजी करोगे तो
1: वाइज सोल कौन सी है जो आत्मा अपनी विजडम से कनेक्टेड होगी। आप देखो जब हम अगेन जब हम महात्माओं के पास जाते हैं उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है
0: वो तो मैंने देखा, लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना।
1: महात्मा नहीं हो, एक मिनट,
0: हम तो
1: महात्मा नहीं हो, मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ, मैं संत आत्मा नहीं हूँ। उस टाइम
0: क्या करना है?
1: उस टाइम मैं नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्टेड हूँ।
0: आप Let us talk to people like us only. आप बीच में महात्मा मत लाइए ना। महात्मा तो करता ही है, मैंने देखा हुआ है। एक मेरे सामने जगत गुरु के आदमी इतना बोला, उन्होंने सिर्फ बोला आप शायद इससे गलत समझ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है।
1: पहली बात तो हम जो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है,
0: इसमें विक्टिम की बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल है। आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था, बोलता मैं सुन के मेरा मन कर था अभी मारो, और वो देख रहे हैं, बोलते शायद नहीं आपके ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी।
1: तो अब वो संत आत्मा उस क्षण उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक से नहीं बात की, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, वो शांत थे,
0: मैं तो बहुत शांत
1: डिस्टर्ब हो रहे थे। ओके, नाउ What was the difference between the two souls only at that time? आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था?
0: वो महात्मा थे, मैं एक्टर था।
1: महात्मा थे, मैं एक्टर था, मतलब क्या?
0: हाँ, मतलब है।
1: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है,
0: तो फिर
1: कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे, मैं एक्टर था। महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है। महात्मा है मतलब
0: क्वालिटीज तो है उनमें,
1: है मतलब डिवेलप की
0: ओरिजिनलिटी भी है, काम भी है उनका, और उनको उसके
1: महात्मा
0: को प्रैक्टिस भी तो होती है ना।
1: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे ना। सी, ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से, वो महात्मा थे, मैं एक्टर था। नहीं, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे, मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपने ईगो में था। यही सब। आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है, हम सब संत आत्मा है। परमात्मा हमें कहता है आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो, सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो, दिव्य आत्मा हो, डिवाइन सोल, देवी देवता। देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा। हर आत्मा वो है डिविनिटी। संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है। आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी चाहिए और आपको ऐसे
0: ईगो होनी चाहिए। नहीं बोला मैं एक्टर हूँ, महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है।
1: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
0: तो क्या हुआ?
1: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
0: महात्मा तो
1: इज नॉट अ प्रोफेशन।
0: तो
1: महात्मा हूँ, एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
0: महात्मा का बिहेवियर,
1: एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
0: क्यों नहीं बन सकता?
1: सिंपल, मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना इज फाइन।
0: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते हैं।
1: हाँ, दैट्स इट, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए।
0: ये आपका पॉइंट समझ में है।
1: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजंट मैटर। महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन। महात्मा
0: रिपीट करेंगे, बहुत सुंदर।
1: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
0: वो आत्मा हाँ,
1: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है। फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है।
0: यू सो राइट, अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है, लड़ाई करते हुए भी देखा है, एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है, पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है।
1: बिल्कुल,
0: यू आर राइट। तो
1: विच इज ओके, अगेन हम यहाँ जजमेंटल नहीं,
0: मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा,
1: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा एवरी सोल एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्यूटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रहे हैं।

0: एंड कुछ भी कर रही है मींस कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है। लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं। एक है हम सब लोग, लेट्स से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करे या कुछ करे, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल। और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है। जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं। आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा।
1: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं है, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है।
0: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे,
1: जिसको
0: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन, और किसको बोलते हैं संत, छोटे बच्चे को,
1: फ्रेंडली चाइल्ड,
0: छोटे बच्चे को जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी नाउ, नॉट इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है। ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना, क्योंकि आज क्या होता है ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम परखने की शक्ति रॉन्ग उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल कहते हैं ओ ये लोग भी ऐसे करते हैं तो फिर हम क्या, फिर वाई आर वी कंपेयरिंग विद एनीबडी, वाई आर वी जजिंग एनीबडी, लेट्स हैव नॉलेज। नॉलेज ये कहती है कि हर आत्मा प्योर है, राइट, हर आत्मा अपनी प्योरिटी से अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्कनेक्ट हुई है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हर आत्मा के पास वो पावर है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जा सकती है। कोई आत्मा हो सकती है घर गृहस्थ में रहती है, सारा दिन बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो वो अपनी डिविनिटी को अपने डे टू डे कर्म में रेडिएट करती है। कोई आत्मा हो सकती है कि वो आश्रम में सेवा करती है, कहीं भी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आत्मा अभी जर्नी पर है, वो अभी अपनी ओरिजिनलिटी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो वर्क कर रही है अपने पर, मेहनत की, लेकिन हुई नहीं है। तो हमें ऐसे को देखकर डिसइल्यूजन भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना कि वैसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास किया, फिर भी गुस्सा करते हैं। नो, इट्स ओके, दिस इज कंपैशन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, एंड उससे क्या होगा, ना हम उनके प्रति जजमेंटल होंगे और ना हम अपने को डिसएम्पावर करेंगे।
1: संत के जो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं उनको गुस्सा करके तो देखता भी हूँ और बोलता भी हूँ ये संत थोड़ा ही है।
0: हमने किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है, हमें हर आत्मा की यात्रा पता नहीं है। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, सपोज आई एम ऑन दिस जर्नी, दिस जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ऐसे नहीं है आज डिसाइड किया तो ये ठीक हो गया, आज डिसाइड किया तो ये परफेक्ट हो गया, नो। अब आज अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ यहाँ एंड आप कहें फिर फायदा क्या है, आप इतना सुना रहे हैं और आप ही गुस्सा कर रहे हैं।
1: मुझे बोलते हैं कि आप शिवानी दीदी के साथ इतने सारे सीरियल किए और छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो फायदा क्या हुआ जाके।

0: मुझे बोलते हैं
1: राइट,
0: तो दे आर राइट।
1: हमें ये चेक करना है
0: सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल। देखिए, मैं किसी महात्मा को देखूं गांजे पी रहा है, मैं किसी को देखूं सिगरेट पी रहा है, किसी को देखूं मैं खराब काम कर रहा है, किसी को देखूं मैं लालची कर रहा है, तो मैं चुप रहूं और बोलूं हा हा हा हा, ऐसे तो होता ही है। ऐसे पॉसिबल है? एवरीबॉडी हैज टू प्ले द रोल। हाँ, तो फिर आपने, आप कितने एपिसोड में बोला आपने ड्यूटी करनी चाहिए?
1: हमारी ड्यूटी पहली ड्यूटी है कि हमें दूसरे के प्रति जजमेंट और क्रिटिकल नहीं होना है।
0: हम जजमेंट कहाँ करें? परखने की शक्ति जो आप बोल रहे हो, परख रहा हूँ मैं।
1: हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ लेना है या नहीं लेना है, आवर चॉइस, वो परखना है। ठीक है, अगर आपको मेरे अंदर कुछ बहुत गलत दिखाई देता है, तो अगर आपको मेरे साथ बैठ के नहीं शेयर करना है, ये आपकी चॉइस, फाइन, ये परखने की शक्ति। लेकिन लेबल करना, जजमेंटल हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, फायदा क्या है? इससे तो आपकी पावर डिप्लीट हो जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा।
0: लेकिन मैं परखा कि आदमी ये संत का ये सब दरबार खोल के बैठा है और इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठा है, वहां मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, वाइफ को भी बोलूंगा कि वहां बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
1: विदाउट बीइंग क्रिटिकल,
0: समझाएं कैसे विदाउट बीइंग क्रिटिकल?
1: कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे अपनी ही शक्ति डिप्लीट होती है। इट्स लाइक ये दिखा, ये ठीक नहीं है, उधर से नहीं चलो, पांव टूटेगा, सिंपल। इतना ही परखना है सिर्फ, उधर नहीं
0: चक्कर में आ जाते हैं ना इनके,
1: तो वो अपनी परखने की शक्ति की कमी
0: है। मेरे बच्चे और बीवी है तो मेरा काम है ना, मैं तो परख लिया,
1: परख लिया,
0: तब उनको समझाऊं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मत।
1: वेरी ट्रू, विदाउट बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट द अदर पर्सन, दिस इज नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
0: सर, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं ऐसे लोगों को, ज्वेलरी दे देते हैं, पैसा देके बैठ जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम होते हैं आपको मालूम है क्या?
1: अपनी परखने की शक्ति की कमी है ना, हमें करना है करें, हमें नहीं करना है नहीं करें, इज फाइन। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जर्नी पे चले जाते हैं, राइट, सपोज मेरी वाइट ड्रेस है लेकिन उस पे काले दाग हैं, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं आना नजदीक, दूर रहना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परख लिया। लेकिन दूर बैठकर अगर आप मुझ पर लगे हुए काले दाग के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उससे मेरे काले दाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूँ अपने दाग को कम करने के लिए, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज करते करते आपकी ड्रेस पर काले दाग ज्यादा लग जाएंगे।
0: मेरी ड्रेस पर काले दाग कैसे लगेंगे सिस्टर? मुझे एक बहुत जरूरी ये जानना है और मैं इसको इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछूंगा।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू। ओम शांति।
2: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो, we see the world through a mirror. Seeing the world through a window means seeing people and situations as they are. Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars, and we may not be able to understand them truly as they are. Rajyoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinions.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Unagi Awaaz 107.8 FM World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. Khush raho, khushiyan baato.
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत.
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत.
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक.
4: क्या आपको पता है कि किसी भी देश में कार से की गई लॉन्गेस्ट जर्नी यानी सबसे लंबी यात्रा 31,798.2 किलोमीटर है. यह यात्रा भारत में ही की गई है और इसे करने वाले 3 भारतीय हैं जिनके नाम हैं आतिफ अब्दुल्ला, शीतल श्रीवास्तव और दीपक श्रीवास्तव. इस यात्रा को इन तीनों भारतीयों ने 30 अप्रैल 2015 से लेकर 7 जून 2015 तक संपन्न किया जिसे वे ड्राइव अगेंस्ट कैंसर कहते हैं. इस यात्रा का उद्देश्य कैंसर डिटेक्शन और उसके

0: ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज करना था। भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
1: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय हिंद,
0: जय भारत।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

यहाँ लाखों वहाँ तो एक खुदा होगा। आदम भी आदम है, इस बात में कम है, इसको बनाया क्यों खुदा को भी यही गम है। अपने किए पर आप ही देखो खुदा पछता।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल्दी रहे।
1: अरे तो चल ले तो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

आपकी आंखों में उमेशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह ना

हमें भी जगह दे दे खुदा।

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेख करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।
0: बापू।

0: पूरे बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
2: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
3: की है बोल भी।

0: और
1: हाय की कहे की कहे प्यार की होए आए प्यार की होए हम तो एक ही बात जाने।
2: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: आता हूँ। आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुने।
0: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही कुसोर, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात, ले ले बढ़ा दो हाथ,
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारे सारी उम्र के कमाए गए डॉलर है। हाय भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।